0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा हितर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बातचीत बहुत अच्छे विषय पर रहने वाली है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, एक पौधे को फूल बनने में समय लगता है और एक बच्चे को समझदार इंसान बनने में समय लगता है। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम चाहते हैं कि हर चीज तुरंत मिल जाए।
0: बिल्कुल।
1: सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चे को इंतजार करना भी सिखा रहे हैं? आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं हमारे बच्चों के जीवन से जुड़ी एक ऐसी आदत की जो छोटी लगती है लेकिन उनके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम बात करेंगे धैर्य और प्रतीक्षा करने की आदत को लेकर।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी होगी। लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी जानते हैं कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले एक प्यारे से गीत के साथ हम करें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि साथियों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है बातचीत का। हम बात कर रहे हैं बच्चों में धैर्य और प्रतीक्षा की आदत क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, क्या आपने कभी देखा है कि बच्चा अपनी मनपसंद चीज तुरंत चाहता है? उसे खिलौना चाहिए तो अभी चाहिए, मोबाइल चाहिए तो अभी चाहिए, खाने की कोई पसंदीदा चीज चाहिए तो इंतजार करना मुश्किल लगता है। अगर उसकी इच्छा तुरंत पूरी न हो अंजलि जी, तो कई बार तो बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: रोने लगता है या गुस्सा करने लगता है। लेकिन साथियों, जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी किसी अवसर के लिए इंतजार करना पड़ता है, कभी मेहनत का परिणाम आने में समय लगता है, तो कभी अपनी बारी आने तक हमें धैर्य रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए धैर्य और प्रतीक्षा करना बच्चों के लिए केवल एक व्यवहार नहीं बल्कि जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण कला है अंजलि जी।
1: बिल्कुल कशिश, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में मोबाइल की एक क्लिक पर चीजें सामने आ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: वीडियो तुरंत चल जाता है, ऑनलाइन सामान घर तक पहुंच जाता है और बच्चे को मनोरंजन के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ता। ऐसे वातावरण में बच्चे के भीतर तुरंत परिणाम पाने की आदत विकसित हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए परिवार और विद्यालय की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह बच्चों को धीरे धीरे प्रतीक्षा, धैर्य और सही समय का महत्व समझाए। जी हाँ श्रोता साथियों, धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को हर इच्छा दबानी पड़े या हमेशा चुप रहना पड़े। धैर्य का मतलब है किसी परिस्थिति में जल्दबाजी किए बिना शांत रहना, अपनी बारी का इंतजार करना और कठिनाई आने पर तुरंत हार न मानना।
0: बिल्कुल,
1: मान लीजिए कशिश कि बच्चा कोई चित्र बना रहा है, चित्र पहली कोशिश में सुंदर नहीं बनता। यदि वह तुरंत कागज फाड़ कर फेंक देता है और उसे छोड़ देता है तो वह सीखने का अवसर खो देता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यदि वह दोबारा प्रयास करता है, गलती सुधारता है और धीरे धीरे बेहतर चित्र बनाता है तो वह धैर्य का अभ्यास कर रहा है। इसी तरह पौधा लगाने के बाद अगले दिन फल नहीं मिलता, बीज को मिट्टी, पानी, धूप और समय चाहिए होता है। बच्चों को यह उदाहरण समझाया जा सकता है कि अच्छे परिणाम भी समय और मेहनत से तैयार होते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं साथियों कि धैर्य जो है वो बच्चों को कठिन परिस्थितियों में संभलना सिखाता है। पढ़ाई में कोई विषय अगर कठिन हो, खेल में अगर हार हो जाए, दोस्त से मनमुटाव हो जाए या किसी प्रतियोगिता में सफलता न मिले, ऐसे में हर परिस्थिति में धैर्य बच्चों को आगे बढ़ने की शक्ति देता है।
1: जी जी
0: अंजलि जी, जिस बच्चे को छोटी सी असफलता के बाद भी प्रयास जारी रखना आता है, उसके भीतर आत्मविश्वास मजबूत रहता है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि वह यह समझता है कि एक बार असफल होना अंतिम परिणाम नहीं होता। धैर्य जो है साथियों, वो बच्चों की एकाग्रता में मदद करता है। किताबें पढ़ना, कोई कला सीखना, पौधे लगाना, संगीत का अभ्यास करना या किसी खेल में कौशल विकसित करना हो, इन सभी कामों के लिए समय और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है दोस्तों।
1: जी हाँ बिल्कुल कशिश, जब बच्चा अपनी बारी का इंतजार करता है तो वह दूसरों के अधिकार का सम्मान भी करना सीखता है। उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, आपको बताएं, यदि कई बच्चे एक ही झूले पर खेलना चाहते हैं तो हर बच्चे को अपनी बारी आने का इंतजार करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: इससे बच्चे में अनुशासन और सामाजिक व्यवहार विकसित होता है। इसी तरह परिवार में यदि सभी लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं और बच्चों को अपनी पसंद की चीज

0: थोड़ी देर बाद मिलती है तो वह प्रतीक्षा करना सीखता है। प्रतीक्षा करने का अर्थ केवल समय काटना नहीं, यह बच्चे को अपने मन और भावना को नियंत्रित करना सिखाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों को धैर्य सिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कैसे सिखा सकते हैं? तो सबसे पहले माता पिता को स्वयं उदाहरण बनना होगा। बच्चे केवल हमारी बातें नहीं सुनते, वे हमारे व्यवहार को देखकर भी सीखते हैं। यदि बच्चा किसी चीज के लिए तुरंत जिद करे तो हर बार उसकी इच्छा तुरंत पूरी करने के बजाय प्यार से समझाए,
1: यह
0: चीज अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मिलेगी। शुरुआत में बच्चा विरोध कर सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास से वह प्रतीक्षा करना सीखता है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चे को छोटे छोटे इंतजार से शुरुआत कराएं, जैसे भोजन परोसने तक इंतजार करना, खेल में अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, किसी पसंदीदा गतिविधि के लिए निर्धारित समय का इंतजार करना।
1: जी हाँ,
0: ऐसी महत्वपूर्ण आदतें हैं जो बच्चे माता पिता से सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम सच्चा बचपन के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम जान रहे हैं कि बच्चों को धैर्य और इंतजार करना हम कैसे सिखाएं, जिसमें हमने ढेर सारी बातों को जाना। अब यही बात आती है कि बच्चों की हर इच्छा तुरंत पूरी करना क्यों ठीक नहीं। श्रोता साथियों, बच्चों से प्यार करना जरूरी है, लेकिन प्यार का अर्थ हर इच्छा पूरी कर देना नहीं है। यदि बच्चे को हर चीज तुरंत मिलती रहे तो इसके भीतर इंतजार करने की क्षमता कम हो सकती है। कभी कभी बच्चे को अभी नहीं सुनना भी सीखना चाहिए, इससे वह निराशा को संभालना सीखता है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण विकसित करता है।
1: बिल्कुल,
0: इसका अर्थ यह नहीं कि बच्चे को जानबूझकर परेशान किया जाए, बल्कि उसकी उम्र और परिस्थिति के अनुसार उचित सीमाएं तय की जाए और उसे प्यार से समझाया जाए। कशिश, आज बच्चों के धैर्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल स्क्रीन टाइम भी है।
1: जी जी।
0: मोबाइल पर बच्चे लगातार छोटे छोटे वीडियो देखते हैं, एक वीडियो खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। इससे लगातार नया मनोरंजन आने की आदत बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बच्चों के दिन में ऐसी गतिविधियां भी होनी चाहिए जिसके परिणाम तुरंत न मिले, जैसे किताब पढ़ना, चित्र बनाना, पौधे लगाना, मिट्टी से चीज बनाना, पहेली हल करना और कोई खेल सीखना।
1: जी हाँ।
0: इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चा समझता है कि हर काम का आनंद तुरंत परिणाम मिलने में नहीं बल्कि प्रक्रिया में भी होता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। साथी, अगर बात करें विद्यालय में धैर्य की सीख की, तो दोस्तों विद्यालय बच्चों को धैर्य सिखाने का एक बहुत अच्छा स्थान हो सकता है। शिक्षक बच्चों को समूह गतिविधियों, खेलों और रचनात्मक कार्यों में शामिल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: किसी बच्चे की बारी आने तक इंतजार करना, दूसरे बच्चे की बात पूरी होने देना, टीम के साथ मिलकर काम करना और गलती होने पर दोबारा प्रयास करना, ये जो सारी चीजें हैं वो रोजमर्रा के छोटे अभ्यास बच्चों में धैर्य विकसित कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: साथ ही अगर बात करें गांव और समुदाय की, तो हमारे ग्रामीण जीवन में अंजलि जी धैर्य की कई प्राकृतिक सीख मौजूद हैं। किसान जो है वो बीज बोने के बाद फसल के लिए समय देता है, पेड़ लगाने के बाद उसके बड़ा होने का इंतजार किया जाता है, वर्षा का इंतजार होता है और मौसम के अनुसार खेती की जाती है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, इन वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है कि प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज का अपना एक समय होता है। साथ ही बच्चों को खेत, बगीचे या प्रकृति से जुड़ना इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि वहाँ उन्हें परिणाम के लिए इंतजार करना प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है।
0: जी जी। इसी के साथ श्रोता साथियों, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके सामने बड़ी चुनौतियाँ आती हैं।
1: जी हाँ।
0: पढ़ाई, परीक्षा, प्रतियोगिता, रोजगार, रिश्ते और जीवन के अनेक फैसले में उन्हें धैर्य की जरूरत होती है। हर जगह तुरंत सफलता नहीं मिलती, कई बार मेहनत के बाद भी परिणाम देर से आता है। ऐसे समय में वही बच्चा आगे बढ़ पाता है जो निराश होकर रुकने के बजाय अपनी कोशिश जारी रखता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए धैर्य सिखाना बच्चे को केवल आज के लिए तैयार करना नहीं बल्कि उसे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाना है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को धैर्य सिखाने के लिए बड़े नियम बनाने की जरूरत नहीं है, रोजमर्रा की छोटी स्थितियां पर्याप्त है। उन्हें अपनी बारी का इंतजार करने दें, किसी काम को पूरा करने का समय दें, हर गलती पर तुरंत समाधान न बताकर उन्हें सोचने का अवसर दें, खेल में हारने पर उन्हें दोबारा प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, पौधा लगाने जैसी गतिविधियों से उन्हें परिणाम के लिए इंतजार करना सिखाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे के धैर्य रखने पर उसकी प्रशंसा करें। जब बच्चा बिना रोए या बिना गुस्सा किए अपनी बारी का इंतजार करता है तो उसे बताएं कि उसने बहुत अच्छी तरह धैर्य रखा, इससे वह इस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित होगा।
1: बिल्कुल
0: साथियों, बचपन में सीखी गई धैर्य की आदतें जो हैं वो आगे चलकर बच्चे के व्यक्तित्व की ताकत बन सकती है। क्योंकि कशिश, जो बच्चा इंतजार करना सीखता है वह दूसरों का सम्मान करना, अपनी भावनाओं को समझना, कठिनाइयों में टिके रहना और मेहनत का परिणाम आने तक प्रयास करते रहना भी सीखता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बच्चों को हर चीज तुरंत देने के बजाय कभी कभी उन्हें प्रतीक्षा का अनुभव भी दें। उन्हें समझाएं कि कुछ चीजों का आनंद इसलिए खास होता है क्योंकि उन्हें पाने के लिए हमने समय दिया, मेहनत की और इंतजार किया। याद रखिए, बच्चे के हाथ में हर चीज तुरंत देना आसान है, लेकिन उसे सही समय का इंतजार कराना सिखाना उसके भविष्य के लिए कहीं अधिक मूल्यवान है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हमारे साथियों को हम सुनवाएं।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: बिल्कुल, इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को।
2: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि किसी की सफलता अगर चुभती है तो हमें ठहर कर सोचना चाहिए। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि सफलता शब्द सुनते ही हमारे मन में खुशी, उपलब्धि, मेहनत और सपनों की तस्वीर उभरती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कशिश कि जब हमारे आसपास का कोई व्यक्ति सफल होता है तो हमें खुशी होने के बजाय भीतर से अजीब सी बेचैनी महसूस होती है।
0: बिल्कुल,
1: किसी दोस्तों को अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई परीक्षा में बेहतर अंक ले आए, किसी परिचित का व्यवसाय चल पड़े, किसी की कला को पहचान मिल जाए या कोई अपने सपनों को पूरा कर ले, तो हम उसके लिए खुश होने के बजाय खुद से उसकी तुलना करने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मन में सवाल आता है कि उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, उसे सफलता इतनी जल्दी क्यों मिल गई, मैं पीछे क्यों रह गया। श्रोताओं, अगर कभी आपके मन में भी ऐसा विचार आए तो खुद को बुरा इंसान समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही ठहर कर खुद से बात करने की जरूरत है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से इस विषय को लेकर हम ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: वर्तमान में तुलना की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हर कोई किसी के कार्य या सफलता को देखकर कह सकते हैं कि मन में ईर्ष्या की भावना पैदा कर लेता है
1: जी,
0: और ये सोचने लगता है कि उसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। ऐसे में श्रोता साथियों, हमें समझने की जरूरत है कि सफलता पाने के लिए मेहनत करना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल,
0: युवावस्था में हम अपने भविष्य को लेकर बहुत सारे सपने देखते हैं साथियों, पढ़ाई, करियर, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्वतंत्रता, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की हमारे युवा साथी इच्छा रखते हैं जागृति जी। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारा कोई साथी हमसे पहले किसी मुकाम पर पहुंच गया है, तो कभी कभी हमारी अपनी अधूरी इच्छाएं हमें उसकी सफलता से जोड़कर दिखाई देने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: असल में श्रोता साथियों, कई बार हमें सामने वाले की सफलता नहीं चुभ रही होती, बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति से असंतोष चुभ रहा होता है। इसलिए ऐसी भावना अगर आपके मन में आए, तो सामने वाले को छोटा करने के बजाय आप खुद से ये पूछिए कि मुझे उसकी सफलता से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। क्या आपको ये लगता है कि आप पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं? क्या श्रोता साथियों, आपके लक्ष्य को लेकर आप स्पष्ट नहीं है? या फिर आप अपनी जो तुलना है वो दूसरे से क्यों कर रहे हैं? इसी के आगे आप खुद से ये भी पूछे कि आपको डर किस बात का है और उस डर के कारण आप पीछे क्यों रह जा रहे हैं।
1: बिल्कुल कशिश, इन सवालों के जवाब हमें अपने बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। श्रोता साथियों, आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया ने तुलना को और आसान बना दिया है। हमें लोगों की जिंदगी का केवल चमकता हुआ हिस्सा ही दिखाई देता है, जैसा कि हम हर कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं। किसी की उपलब्धि दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत हमें नहीं दिखाई देती। किसी की नौकरी दिखाई देती है, लेकिन उसके संघर्ष नहीं दिखाई देते। किसी की सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसकी असफलताओं को हम नहीं देखते हैं। और फिर हम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की चुनी हुई तस्वीरों और उपलब्धियों से करने लगते हैं। यहीं से मन में हीन भावना और बेचैनी जन्म ले सकती है। श्रोता साथियों,
0: जी जी,
1: इसलिए याद रखिए कि हर व्यक्ति की शुरुआत अलग होती है, परिस्थितियाँ अलग होती है, संसाधन अलग होते हैं और सफलता का समय भी अलग होता है। इसीलिए किसी और की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को असफल मत मानिए।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ दोस्तों, किसी की सफलता को प्रेरणा बनाइए, प्रतियोगिता नहीं। यानी कि अगर आपका कोई दोस्त सफल हुआ है, तो उसके सामने खुद को छोटा करने की आपको जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: बल्कि आप ये सोचिए कि अगर वह कर सकता है तो मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकता हूँ। उससे श्रोता साथियों, आप कुछ सीखिए, उसकी मेहनत के बारे में पूछिए, गलतियों से समझिए और रणनीति से प्रेरणा लीजिए। लेकिन उसकी सफलता की नकल मत कीजिए युवा साथियों, क्योंकि प्रेरणा हमें आगे बढ़ाती है, जबकि अंधी तुलना हमें भीतर से कमजोर कर सकती है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: हर युवा की सफलता का रास्ता अलग हो सकता है। किसी के लिए सरकारी नौकरी सफलता है, तो किसी के लिए अच्छा व्यवसाय, किसी के लिए अपने परिवार को संभालना सफलता है, तो किसी के लिए कोई हुनर सीखना और किसी के लिए समाज के लिए काम करना।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, सफलता की परिभाषा भी अपनी आप बनाइए।
1: जी हाँ कशिश, और हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जब किसी की सफलता हमें चुभे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुक जाइए। अपने आप से पूछिए कि मैं पिछले एक साल में कितना आगे बढ़ा हूँ। हो सकता है आज आपके पास वो नौकरी ना हो जिसकी आपने कल्पना की थी, लेकिन आपने कोई नया कौशल जरूर सीखा है। हो सकता है आपका व्यवसाय अभी छोटा हो, लेकिन आपने शुरुआत तो की है। हो सकता है कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हुए हो, लेकिन आपने अपनी कमियों को पहचाना हो। और हो सकता है कि आपकी मंजिल अभी दूर हो, लेकिन आपके कदम पहले से आगे बढ़ रहे हो।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए अपनी प्रगति को केवल अंतिम परिणाम से मत मापिए। कभी कभी छोटी प्रगति भी बड़ी जीत होती है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,
0: तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी इस कार्यक्रम में कि किसी की सफलता चुभती है तो हमें ठहर कर सोचना चाहिए। हमने जाना था सफलता चुभने का मतलब क्या होता है, तुलना कहाँ से शुरू होती है, किसी की सफलता को प्रेरणा बनाना है, प्रतियोगिता नहीं। ये सारी बातें हमने गीत से पहले आपसे करी थी। यही जानते हैं श्रोता साथियों कि ईर्ष्या को संकेत की तरह देखना है, यानी कि अगर किसी की सफलता देखकर मन में ईर्ष्या या जलन महसूस होती है तो उसे दबाने की बजाय समझने की कोशिश भी करनी है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार यही भावना हमें बताती है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। मान लीजिए श्रोता साथियों कि हमारा दोस्त अच्छा गायक बन गया हो और आपको उसकी लोकप्रियता देखकर बेचैनी हुई हो। हो सकता है कि आपके भीतर भी संगीत के लिए जुनून हो जिसे आपने कभी समय ही नहीं दिया।
1: बिल्कुल,
0: किसी की नौकरी देखकर आपको बेचैनी हुई, शायद आपको भी अपने करियर को लेकर गंभीरता से योजना बनाने की जरूरत है। किसी के व्यवसाय को देखकर मन परेशान हुआ, शायद आपके भीतर भी कुछ नया करने की इच्छा है। इसलिए भावनाओं को नकारने के बजाय उसे दिशा दीजिए, ईर्ष्या को ऊर्जा में और तुलना को आत्मचिंतन में जरूर बदलिए।
1: जी हाँ युवा साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें सभी को एक ही समय पर एक ही स्थान पर पहुंचना होता है।
0: बिल्कुल,
1: किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, और किसी को कई प्रयासों के बाद मिलती है जागृति जी, तो किसी को तो अपना रास्ता बदल कर फिर सफलता मिलती है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो पहले सफल हुआ वही बेहतर है। एक पेड़ जल्दी बढ़ सकता है, दूसरा धीरे, लेकिन दोनों की अपनी जगह और अपनी उपयोगिता होती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह आपका सफर भी आपका अपना है, इसलिए किसी के सफलता देखकर ये मत सोचिए कि वो मुझसे आगे निकल गया है, बल्कि ये सोचिए कि उसकी यात्रा अपनी है और मेरी यात्रा अपनी है।
0: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि दूसरों की सफलता का सम्मान हमें भी करना चाहिए, क्योंकि श्रोता साथियों, किसी की सफलता का सम्मान करना केवल उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है बल्कि हमारे अपने व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम जब दूसरों की उपलब्धियों पर दिल से बधाई देना सीखते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ती है। दूसरे की सफलता को स्वीकार करना ये नहीं बताता श्रोताओं कि हम उससे कम है, बल्कि ये बताता है कि हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। जिसे अपनी मंजिल पर विश्वास होता है वह हर सफल व्यक्ति को खतरे की तरह नहीं देखता, बल्कि दूसरों की सफलता से सीखता है और अपनी यात्रा जारी रखता है।
1: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं साथियों कि आज सोशल मीडिया पर सफलता का प्रदर्शन बहुत ज्यादा दिखाई देता है। नई नौकरी, नए कार, यात्रा, पुरस्कार, उपलब्धि, स्टेज, फोटो, सब कुछ हमारी स्क्रीन पर आता रहता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि सोशल मीडिया किसी व्यक्ति की जिंदगी का पूरा सच नहीं दिखाता।
0: जी हाँ,
1: इसलिए जब भी किसी की उपलब्धि देखकर आपको लगे कि सब आगे निकल रहे हैं और आप पीछे रह गए हैं, तो फोन थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और अपने जीवन की वास्तविकता को देखिए साथियों। अपने लक्ष्य को लिखिए, अपनी पिछली उपलब्धियां याद कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए और अगला छोटा कदम तय कीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी देखने से आपका भविष्य नहीं बदलेगा लेकिन अपने लक्ष्य की ओर उठाया गया एक कदम जरूर बदल सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों की मान लीजिए किसी व्यक्ति की सफलता आपको बहुत प्रभावित करती है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, पहला रास्ता उसकी बुराई करना, उसकी कमियां निकालना और मन में नकारात्मकता रखना।
1: बिल्कुल,
0: दूसरा रास्ता ये कि हमें समझना है कि मुझे भी अपने जीवन में मेहनत और सुधार की जरूरत है, क्योंकि दूसरों को नीचे खींचने में जो ऊर्जा खर्च होती है श्रोता साथियों, वही ऊर्जा अगर अपने विकास में लगाई जाए तो परिणाम बदल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसी की सफलता को अपनी असफलता का प्रमाण मत बनाइए, उसे अपने विकास की प्रेरणा जरूर बनाइए।
1: जी हाँ साथियों, आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और उसी आत्मचिंतन के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि मुझे उसकी सफलता से वास्तव में परेशानी क्यों हो रही है, क्या मैं अपनी तुलना किसी और से कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर रही हूं, उस व्यक्ति से मैं क्या सीख सकता हूं या सीख सकती हूं, और अगले 7 दिनों में मैं अपने लिए कौन सा छोटा कदम उठाऊंगी। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब शायद आपकी सोच की दिशा बदल दें।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए युवा साथियों कि आप पीछे नहीं हैं। जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब हमें लगता है कि बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं जागृति जी, लेकिन कई बार हम अपनी प्रगति देखना ही भूल जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: कल की तुलना में आज अगर आपने कुछ नया सीखा है साथियों, अगर आपने कोई गलती सुधारी है, अगर आपने डर के बावजूद कोशिश की है और अगर आपने हार के बाद भी शुरुआत की है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। सफलता केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है, सफलता अपने पुराने रूप से बेहतर बनने का नाम भी है।
0: जी हाँ कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, अगली बार जब किसी की सफलता आपको चुभे तो तुरंत उस व्यक्ति से तुलना मत करना, ठहरना, सोचना और खुद से पूछना कि उसकी सफलता मुझे क्यों परेशान कर रही है और मैं अपने जीवन में क्या बदल सकता हूँ या सकती हूँ।
1: बिल्कुल,
0: हो सकता है श्रोता साथियों उस एक सवाल से हमें अपने किसी दबे हुए सपने का पता चल जाए। हो सकता है कि हमें अपनी कमी दिखाई दे, हो सकता है कि हमें अपने लक्ष्य की दिशा मिले। दूसरों की सफलता को देखकर जलने के बजाय उससे जरूर सीखना, दूसरों की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को छोटा भी मत समझना, और सबसे जरूरी बात है किसी और की रोशनी हमारे हिस्से का उजाला कम नहीं कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: हमारी सफलता का समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए आज से हमें अपनी यात्रा को ईमानदारी से आगे बढ़ाना होगा।
1: जी हाँ,
0: याद रखिए दूसरों से आगे निकलना सफलता नहीं, हर दिन खुद से बेहतर बनना ही असली सफलता है।
1: जी हाँ,
0: तो साथियों ये थी हमारी आज की बातें कि किस तरह से हमें किसी की सफलता चुभती है तो ठहर कर सोचना है।
1: बिल्कुल जागृति जी, और ये बातें हमारी युवा साथियों से आज कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी रही। उम्मीद करते हैं हमारे युवा साथियों को ये बातें जरूर पसंद आई होंगी।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं।

0: साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, देशभक्ति का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब हम अपने छोटे छोटे कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाते हैं। अंजलि, देशभक्ति केवल तिरंगा लहराने, देशभक्ति के गीत गाने या विशेष अवसरों पर देश के प्रति प्रेम व्यक्त करने का नाम नहीं है। एक विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता है, किसान मेहनत से अन्न उगाता है, शिक्षक पूरी निष्ठा से शिक्षा देता है, कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करता है और नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझता है, यही सच्ची देशभक्ति है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, क्योंकि देश केवल उसकी सीमाओं, सड़कों और इमारतों से नहीं बनता, देश उसके ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों से बनता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं देशभक्ति का सबसे सुंदर रूप ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ है।
1: बिल्कुल श्रोता साथियों, देशभक्ति का नाम सुनते ही हमारे मन में तिरंगे की शान, स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग, सीमा पर खड़े वीर जवान और राष्ट्रगान की गूंज की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या देशभक्ति केवल देश के लिए बड़े बड़े कार्य करने का नाम है? नहीं, देशभक्ति का सबसे सुंदर और सच्चा रूप हमारे रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देता है। जब जागृति जी कोई व्यक्ति अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है, अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाता है, नियमों का सम्मान करता है और समाज के हित को अपने स्वार्थ से ऊपर रखता है, तब वह वास्तव में देश की सेवा कर रहा होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि देश केवल सीमाओं से नहीं बनता, देश उसके नागरिक के चरित्र, कर्म और जिम्मेदारी से बनता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को सच्ची देशभक्ति का आधार कहा जा सकता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि ईमानदारी मनुष्य के चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति है। ईमानदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता।
1: बिल्कुल,
0: वो अपने लाभ के लिए किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करता और अपने कार्य में किसी प्रकार की बेईमानी से बचता है। अंजलि, हम अक्सर सोचते हैं कि देशभक्ति का अर्थ देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन यदि हम अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी रखें तो ये भी राष्ट्र सेवा का एक ही रूप है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि विद्यार्थी परीक्षा में नकल न करे, कर्मचारी अपने काम के प्रति ईमानदार रहे, व्यापारी सही वस्तु और सही कीमत दे, नागरिक अपने दायित्व को समझे, ये छोटे छोटे जो उदाहरण है वो देशभक्ति को मजबूत करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: एक ईमानदार नागरिक समाज में विश्वास पैदा करता है और विश्वास किसी भी मजबूत राष्ट्र की नींव होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात कर रहे हैं कर्तव्य निष्ठा की। तो श्रोता साथियों, कर्तव्य निष्ठा का अर्थ अपने दायित्व को पूरी जिम्मेदारी, लगन और निष्ठा से निभाना है।
0: बिल्कुल,
1: केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या है, उसे सही ढंग से पूरा करना भी जरूरी है। एक शिक्षक का कर्तव्य केवल विद्यालय आना नहीं बल्कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना है। डॉक्टर का कर्तव्य केवल इलाज कराना नहीं बल्कि मरीज के प्रति संवेदनशील रहना है। किसान का कर्तव्य मेहनत से खेती करना है। विद्यार्थी का कर्तव्य मन लगाकर पढ़ना और अपने चरित्र का निर्माण करना है। इसी तरह प्रत्येक नागरिक का अपना एक कर्तव्य है। जब देश के करोड़ों नागरिक अपने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, तब राष्ट्र की प्रगति अपने आप तेज हो जाती है।
0: बिल्कुल, जैसे कि हम राष्ट्रीय पर्वों पर देशभक्ति के गीत गाते हैं, तिरंगा फहराते हैं और देश के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, यही हमारी राष्ट्रीय भावना को मजबूत करता है। लेकिन देशभक्ति का वास्तविक परीक्षण हमारे व्यवहार में होता है श्रोता साथियों।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम तिरंगे की बात करें तो हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, तो हमें अपने देश की सार्वजनिक संपत्ति का भी सम्मान करना होगा। हम देश की स्वच्छता की बात करते हैं तो हमें सड़क पर कचरा नहीं फेंकना होगा। यदि हम देश की प्रगति चाहते हैं तो हमें अपने काम में लापरवाही भी नहीं करनी होगी।
1: जी जी,
0: देशभक्ति की असली पहचान ये है कि कोई हमें देख रहा हो या नहीं, हम अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, सड़कें, विद्यालय, अस्पताल, पार्क, पुस्तकालय, सरकारी भवन और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की संपत्ति है। इन्हें नुकसान पहुंचाना वास्तव में देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचाना है। एक जिम्मेदार नागरिक सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति की तरह सुरक्षित रखता है। वो दीवारों पर अनावश्यक रूप से नहीं लिखता, सार्वजनिक स्थानों को गंदा नहीं करता और किसी सरकारी सुविधा का दुरुपयोग नहीं करता। जब हम सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा करते हैं तो हम देश के विकास में अपना योगदान देते हैं।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, देश को मजबूत बनाने में कानून और नियमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यातायात नियमों का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। हम देखते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि किसी छोटे नियम को तोड़ने से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जब करोड़ों लोग इसी सोच के साथ नियम तोड़ने लगे तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है जागृति जी। इसलिए सच्चा देशभक्त वही है जो केवल सुविधा के समय नहीं बल्कि हर परिस्थिति में नियमों और जिम्मेदारियों का सम्मान करे।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं देशभक्ति का सबसे सुंदर रूप ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा है, तो बातें ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि नियमों का पालन करना, अनुशासन की पहचान करना भी देशभक्ति का ही एक स्वरूप है। यहीं इसमें जागृति जी युवाओं की भूमिका की बात करें तो श्रोता साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में होता है, जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा कहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: युवा यदि ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत और कर्तव्य निष्ठा को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो देश की दिशा बदल सकती है। जागृति जी, आज का युवा विद्यार्थी है तो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अच्छे चरित्र का निर्माण करे। वह अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के हित में कर सकता है। वह नई सोच और तकनीक और नवाचार के माध्यम से देश की समस्याओं का समाधान देख सकता है। युवाओं को यह समझना होगा कि देश की सेवा केवल किसी विशेष क्षेत्र में जाकर नहीं की जाती। जिस क्षेत्र में हम हैं, उसी क्षेत्र में ईमानदारी और श्रेष्ठ कार्य करना भी राष्ट्र सेवा है।
1: बिल्कुल, जैसे कि अंजलि, देश के विकास के लिए हमेशा बड़े बड़े कार्यों की आवश्यकता नहीं होती। छोटे छोटे अच्छे कार्य भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, व्यक्ति पानी बचाता है, दूसरा बिजली की बचत करता है, कोई पौधा लगाता है, कोई जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है, कोई अपने आसपास स्वच्छता रखता है और कोई अपने कार्यस्थल पर पूरी ईमानदारी से काम करता है।
0: जी जी।
1: इन सभी कार्यों का सामूहिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जब एक समाज अपने छोटे छोटे कर्तव्य को गंभीरता से निभाता है तो वही समाज एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण भी करता है। हम अक्सर समाज और देश में बदलाव की उम्मीद करते हैं अंजलि, लेकिन बदलाव की शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। श्रोताओं, हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, क्या मैं अपने समय का सही उपयोग करता हूँ, क्या मैं दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता हूँ या करती हूँ, क्या मैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करती हूँ, क्या मैं अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती हूँ। यदि हर व्यक्ति इन सवालों का जवाब ईमानदारी से तलाश, श्रोताओं, अपने व्यवहार में सुधार लाए तो देश में सकारात्मक परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सच्ची देशभक्ति का अर्थ केवल देश से प्रेम करना नहीं बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी है।
1: बिल्कुल,
0: इससे प्रेम तभी सार्थक है जब वह हमारे कर्मों में दिखाई दे। एक सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है, किसान खेत में मेहनत करके देश का पेट भरता है, शिक्षक ज्ञान की रोशनी फैलाता है, वैज्ञानिक नई खोज से देश को आगे बढ़ाता है।
1: जी हाँ।
0: डॉक्टर लोगों की सेवा करता है, श्रमिक अपने परिश्रम से विकास की नींव मजबूत करता है, विद्यार्थी शिक्षा और संस्कार प्राप्त करके भविष्य का निर्माण करता है। हर व्यक्ति का कार्य अलग है लेकिन उद्देश्य एक हो सकता है, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाकर देश को बेहतर बनाना।
1: बिल्कुल अंजलि, देशभक्ति किसी एक दिन की भावना नहीं बल्कि जीवन जीने की एक जिम्मेदार सोच है। तिरंगे को सलाम करना देशभक्ति है, लेकिन तिरंगे की गरिमा के अनुरूप अपने आचरण को रखना उससे भी बड़ी देशभक्ति है। राष्ट्रगान का सम्मान करना देशभक्ति है, लेकिन राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करना उससे भी आवश्यक है।
0: बिल्कुल,
1: हमें समझना होगा श्रोताओं कि देश का निर्माण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, देश का निर्माण हम सभी के ईमानदार कर्मों से होता है। इसीलिए आज हमें ये मन में सोच लेना है कि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे, नियमों का सम्मान करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और समाज के हित में अपना योगदान देंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि देशभक्ति केवल सीमा पर दिखाई देने वाला साहस नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देने वाली ईमानदारी भी है। जब हर नागरिक अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएगा तभी देश सच्चे अर्थों में मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगा। देशभक्ति शब्दों से नहीं, हमारे कर्मों से पहचानी जाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन देश को मजबूत बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपने हिस्से का छोटा काम ईमानदारी से करना होगा।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि देशभक्ति किसी एक दिन की भावना नहीं है, ये हमारे जीवन की रोजमर्रा की आदतों में दिखाई देने वाली सोच है। देश के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले सैनिकों का साहस हमारे लिए प्रेरणा है, लेकिन देश के भीतर हर नागरिक की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा भी राष्ट्र की ताकत है। एक ईमानदार किसान, मेहनती मजदूर, जिम्मेदार कर्मचारी, निष्ठावान शिक्षक, जागरूक महिला, अनुशासित युवा, पढ़ाई के प्रति समर्पित विद्यार्थी और अपने गांव को स्वच्छ रखने वाला नागरिक, हर कोई अपने तरीके से देश का निर्माण कर रहा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देश के लिए कोई और कुछ करे, हमें सोचना चाहिए कि देश के लिए मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी क्या निभा सकता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जब एक एक नागरिक अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है तब गांव मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है और राष्ट्र मजबूत होता है। इसलिए हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि ईमानदारी को अपनी आदत बनाएंगे, कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, प्रकृति और संसाधनों को बचाएंगे और अपने हर काम में देश हित को ध्यान में रखेंगे।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, अब समय का मान रखते हुए विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वह आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को। नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, स्वच्छ हाथ स्वस्थ परिवार, यही है खुशियों का आधार। साबुन पानी साथ रखेंगे, बीमारी को दूर भगाएंगे।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, इन्हीं बातों के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल।
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।
0: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर एक नए विषय के साथ में। आज हम कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो देखने में तो बहुत छोटी लगती है लेकिन हमारे पूरे परिवार और समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज हमारा कार्यक्रम का विषय है स्वच्छ हाथ स्वस्थ जीवन। मनीषा, हम दिन भर में न जाने कितनी चीजें छूते हैं, दरवाजे की कुंडी, मोबाइल, पैसे, खेत में इस्तेमाल होने वाले औजार, पशुओं से जुड़ी वस्तुएं, सार्वजनिक स्थानों की चीजें और मिट्टी। इन चीजों को छूने के बाद हमारे हाथों पर कई तरह के सूक्ष्म जीव आ सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, भोजन बनाते हैं और अपने चेहरे, आंख, नाक और मुंह को छूते हैं तो यही गंदगी हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकती है। इसलिए हाथ धोना केवल सफाई की आदत नहीं बल्कि बीमारियों से बचाव की पहली सीढ़ी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छ हाथ स्वस्थ जीवन और हाथों की स्वच्छता के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि स्वच्छ हाथ स्वस्थ जीवन केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि स्वस्थ रहने का एक महत्वपूर्ण संदेश भी है।
1: बिल्कुल,
0: हमारा दैनिक जीवन श्रोता साथियों अनेक प्रकार के कामों से जुड़ा हुआ है। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, घर का काम करते हैं, स्कूल या कार्यालय जाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं साथियों, और अलग अलग वस्तुओं को छूते हैं। इन सभी गतिविधियों के दौरान श्रोता साथियों हमारे हाथों पर धूल, मिट्टी और अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु चिपक सकते हैं। यदि श्रोता साथियों हम हाथों की सही तरीके से सफाई नहीं करते हैं और उन्हीं हाथों से खाना खाते हैं या आँख या नाक या मुँह को छूते हैं साथियों, तो ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर तक पहुँच सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें तो हमारे हाथ हमारे शरीर का सबसे अधिक सक्रिय हिस्सा है। हम हाथों से खाना खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, पानी भरते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, पशु की देखभाल करते हैं और रोजमर्रा की लगभग हर चीज छूते हैं। श्रोता साथियों, काम करते समय हाथों पर दिखाई देने वाली मिट्टी के साथ साथ ऐसे सूक्ष्म जीव भी लग सकते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। केवल हाथ देख कर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वे पूरी तरह साफ है या नहीं। जब हम बिना हाथ धोए भोजन करते हैं, हाथों पर मौजूद गंदगी और सूक्ष्म जीव भोजन के साथ शरीर में जा सकते हैं, तो इससे दस्त, उल्टी, पेट से जुड़ी परेशानी और कई संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए हाथों की स्वच्छता परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कहना चाहेंगे कि हाथ हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला अंग है। इसीलिए श्रोता साथियों, हाथों की स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। अच्छी तरह से हाथ धोने की आदत कई संक्रमणों से बचाने में मदद कर सकती है।
1: जी जी।
0: खासकर साथियों, बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए हाथों की स्वच्छता है वो बहुत जरूरी है। हाथों को धोना श्रोता साथियों एक छोटी सी और आसान आदत है, लेकिन इसका प्रभाव अंजलि जी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा है। यदि परिवार का हर सदस्य सही समय पर और सही तरीके से हाथ धोने की आदत बना ले तो हम देखते हैं कि कई बीमारियों के फैलने की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है।
1: जी बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों, हमें हाथों की स्वच्छता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनाना चाहिए।
1: जी हाँ मनीषा, हाथ धोने के लिए केवल ये देखना जरूरी नहीं है कि हाथों पर मिट्टी लगी है या नहीं है।
0: जी हाँ,
1: कुछ खास परिस्थितियों में हाथ धोना बहुत जरूरी है, जैसे कि खाना बनाने से पहले, यानी कि श्रोता साथियों रसोई में जाने और भोजन बनाने से पहले हाथ साफ करना जरूरी है। इससे हाथों की गंदगी भोजन तक पहुंचने की संभावना कम होती है। खाना चाहे घर का हो या बाहर का, खाने से पहले हाथ धोने की आदत डालें।
0: बिल्कुल।
1: छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही होती है इस समय, इसलिए उन्हें खाना खिलाने से पहले हाथों की सफाई का विशेष महत्व हमें सिखाने की जरूरत है। इसी के साथ मनीषा, शौचालय जाने के बाद यह हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि शौचालय के बाद हाथों पर मौजूद कीटाणु दूसरे लोगों और वस्तुओं तक पहुंच सकते हैं। छोटे बच्चे की सफाई करने के बाद साबुन और पानी से हाथ जरूर धोएं। गांव में पशुपालन दैनिक जीवन का हिस्सा है। पशुओं को छूने या उसकी जगह की सफाई करने के बाद हाथों को धोना खासकर भोजन से पहले बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, खांसी और छींक के दौरान हाथों का इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए हाथों की सफाई करना जरूरी है। कूड़े के संपर्क में आने के बाद बिना हाथ धोए भोजन या रसोई की चीजों को हमें नहीं छूना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से बातें चली रही हैं कि स्वच्छ हाथ स्वस्थ जीवन और हाथों की स्वच्छता हम कैसे रखें।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हमारी श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य की ओर। जैसा कि मनीषा, हमने गीत से पहले जाना कि कब और किस तरीके से हमें हाथ धोने की जरूरत है, यही हाथ धोने का सही तरीका क्या है, अगर ये हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं। तो श्रोता साथियों, हाथ धोना केवल पानी के नीचे हाथ लगाने का नाम नहीं है, साबुन और साफ बहते पानी से हाथों को अच्छी तरह रगड़ कर धोना जरूरी है। आसान तरीके की बात करें तो पहला कदम है साफ पानी से हाथ हमें सबसे पहले गीले करने हैं, हाथों पर साबुन लगाना है, दोनों हथेलियों को अच्छे तरीके से रगड़ना है, हाथों को उल्टी तरफ यानी हथेली के पीछे की तरफ की ओर साबुन लगाकर रगड़ें, दोनों हाथों की उंगलियों के बीच अच्छी तरह सफाई करें, उंगलियों के सिरों और नाखूनों के आसपास को भी रगड़ें, दोनों अंगूठे को अच्छी तरह साफ करें, कलाई तक हाथों को अच्छी तरह रगड़ें, साफ पानी से साबुन अच्छी तरह धो लें और हाथों को साफ कपड़े और उचित तरीके से सुखाएं। जल्दी जल्दी हाथ धो लेने से बेहतर है कि कुछ समय लेकर हाथों के हर हिस्से की अच्छी तरह सफाई की जाए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, ये तो आपने हमारे श्रोता साथियों को बताया कि हाथ धोने का सही तरीका क्या है। यहीं अगर बात करें कि घर में हाथों की स्वच्छता क्यों जरूरी है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि घर को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम अपने परिवार के सदस्यों के हाथों को साफ रखने पर ध्यान देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: घर में साबुन और पानी ऐसी जगह पर उपलब्ध होना चाहिए श्रोता साथियों, जहाँ परिवार के लोग आसानी से हाथ धो सकें।
0: बिल्कुल,
1: रसोई में काम करने वाले व्यक्ति को भोजन बनाने से पहले कच्चे खाद्य सामग्री संभालने के बाद श्रोता साथियों हाथों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए, और भोजन करते समय या भोजन बनाते समय भी हमें हाथ धोने चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यही अगर अंजलि जी बात करें कि हाथों की स्वच्छता और भोजन की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि भोजन हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है, लेकिन यदि भोजन तैयार करने या खाने से पहले श्रोता साथियों हम हाथ नहीं धोते हैं, तो भोजन के माध्यम से संक्रमण का खतरा है वो बढ़ सकता है।
0: जी हाँ,
1: भोजन बनाने वाले व्यक्ति को हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, फल और सब्जियों को भी उचित तरीके से धोकर उपयोग करना चाहिए, कच्चे और पके भोजन को संभालते समय भी स्वच्छता का ध्यान रखना भी हमारे लिए श्रोता साथियों उतना ही जरूरी है। इस तरह हाथों की स्वच्छता खाद्य स्वच्छता का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, बारिश के दिनों में मिट्टी, कीचड़ और नमी बढ़ जाती है। गांव में लोग खेतों में काम करते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं और घर के आसपास भी गीलापन रहता है। ऐसे समय में हाथों की सफाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बाहर से घर आने के बाद हाथ साफ करना, भोजन से पहले हाथ धोना, शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना विशेष रूप से जरूरी है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके हाथों की सफाई पर भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चे अक्सर खेलते समय हाथों को मुंह तक ले जाते हैं। अगर हाथों पर केवल सामान्य धूल मिट्टी लगी है तो पानी से सफाई हो सकती है, लेकिन कई परिस्थितियों में साबुन के साथ हाथ धोना अधिक प्रभावी होता है। श्रोता साथियों, हम अपने घर में एक छोटा सा नियम बना सकते हैं। घर में प्रवेश के बाद हाथ साफ करें, खाने से पहले हाथ साफ करें, शौचालय के बाद हाथ साफ करें। बच्चों को इस नियम का हिस्सा बनाएं। घर के बड़े सदस्य अगर स्वयं इस आदत का पालन करेंगे तो बच्चे भी उसे आसानी से अपनाएंगे। गांव में सामुदायिक स्तर पर भी हाथों की स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, स्वयं सहायता समूह और ग्राम सभा जैसे मंचों पर स्वस्थ हाथों के महत्व की चर्चा की जा सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर श्रोता साथियों को बताएं कि हमारे रोज की जो छोटी छोटी आदतें हैं उनमें भी हमें थोड़ी सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि श्रोता साथियों, हाथों की स्वच्छता के साथ साथ कुछ सामान्य बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि नाखूनों को साफ रखना, गंदे हाथों से आंख, नाक या मुंह को बार बार न छुए, भोजन से पहले श्रोता साथियों हाथ धोए, शौचालय के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ करें, खांसते या छींकने के बाद भी हमारे हाथों की सफाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि साथियों साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त तो एल्कोहल आधारित हैंड वॉश यानी कि सैनिटाइजर का उपयोग भी आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हालांकि साथियों जब हाथ बहुत गंदे या चिकने हो तो साबुन और पानी के साथ धोना ही हमारे लिए एक सही विकल्प हो सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, हमारे हाथ दिन भर हमारे साथ काम करते हैं, इसलिए हाथों की सफाई हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ जीवन की शुरुआत हमेशा किसी बड़ी चीज से नहीं, कई बार एक छोटी सी आदत से ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनती है। इसलिए स्वस्थ हाथ, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ परिवार, खुशहाल जीवन, इसी संदेश के साथ आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके
3: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है
0: होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपड़ने आपड़े मैं देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे
3: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है
0: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
3: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची शकंगा
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। जी हां श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं एक नए प्रेरणादायक विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर मैं हाजिर हूँ। साथियों, आज का हमारा विषय है दूसरों की मदद करने का महत्व। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेले कभी जीवन नहीं जी सकता। उसे जीवन के हर मोड़ पर किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता तो पड़ती ही है। कभी परिवार हमारा सहारा बनता है दोस्तों, तो कभी हमारे मित्र, कभी हमारे शिक्षक, तो कोई अनजान व्यक्ति जो मुश्किल समय में हमारा मददगार बन जाता है। इसी कारण से दोस्तों सहायता और सहयोग मानव जीवन की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। हम देखते हैं कि दूसरों की मदद करना केवल एक अच्छा कार्य नहीं है, बल्कि ये इंसानियत की सबसे सुंदर पहचान होती है। साथियों, जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए दया, करुणा और सहयोग की भावनाएं होती है ना, वे वास्तव में महान कहलाते हैं। और हम देखते हैं कि मदद केवल पैसों से नहीं होती, बल्कि अच्छे शब्दों, सही मार्गदर्शन, समय देने और भावनात्मक सहारे से भी होती है। साथियों, तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों पहले यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन हम करें। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुकी और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज के इस कार्यक्रम में हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं कि दूसरों की मदद करने का क्या महत्व है। साथियों, यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूसरों की मदद करना एक बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि ये जो दूसरों की मदद करना यानी कि सहायता करने की भावना है वो आखिर है क्या। दोस्तों, सहायता का मतलब होता है कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की कठिन समय में मदद करना। जब हम दोस्तों बिना स्वार्थ के किसी के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, किसी के कठिन समय में उसे संभालते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, तो वही सच्ची मदद कहलाती है। साथियों, हम देखते हैं कि आज के समय में लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार उन्हें दूसरों के दुख और संघर्ष के बारे में तो पता ही नहीं चलता, और हम देखते हैं कि उनका दुख उन्हें दिखाई भी नहीं देता है। साथियों, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को महसूस करता है,

रहो। अगर आपके कार्यों से दोस्तों किसी और के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी और के घर में दिया जलता है, या फिर कहूँ तो किसी और के घर में खुशियाँ आती है, तो उससे अच्छा काम या उससे पुण्य का काम कोई भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, वही व्यक्ति असल में ईमानदार कहलाता है और समाज में बदलाव ला सकता है जिसने अपने कार्यों से किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई हो। हम देख सकते हैं दोस्तों कि दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक खुशी मिलती है, यानी कि अंदर से खुशी मिलती है। साथियों, जब हम किसी की सहायता करते हैं तो केवल सामने वाले को ही राहत नहीं मिलती दोस्तों, बल्कि हमारे मन को भी शांति और संतोष मिलता है। जैसे कि किसी भूखे को भोजन खिलाना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी विद्यार्थी को पढ़ाना, या फिर श्रोता साथियों किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना। हम देखते हैं कि ये जो सभी कार्य हैं, वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि दुनिया की कोई भी दौलत उस खुशी की बराबरी नहीं कर सकती जो किसी की मदद करके हमें मिलती है। मदद करने से दोस्तों हमारा मन हल्का होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन का उद्देश्य भी हमें समझ में आने लगता है। दोस्तों कई बार तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, इसलिए हम किसी की सहायता नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों सहायता के लिए धन से अधिक जरूरी है अच्छा दिल और सच्ची भावना। एक मीठा शब्द भी श्रोता साथियों किसी टूटे हुए इंसान को एक नई उम्मीद दे सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दूसरों की मदद करने से हमें एक आत्मिक शांति, संतोष और खुशी मिलती है। तो जैसा कि दोस्तों बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे चल ही रही हैं, ये बातें मैं आगे भी करूंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा विषय हमारा बातचीत का चल रहा है, हम जान रहे हैं कि दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है और इस मदद से हमें क्या फायदे हो सकते हैं। गीत से पहले जैसा कि हम जान पाए थे श्रोता साथियों कि दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक खुशी मिलती है। अब यही अगर बात करूँ श्रोता साथियों, तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो इससे समाज में भी मजबूती आती है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मेरे मदद करने से समाज में मजबूती कैसे आएगी, तो आपसे कहना चाहेंगे कि जिस समाज में श्रोता साथियों लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वह समाज हमेशा मजबूत और खुशहाल बनता है। अगर समाज में केवल स्वार्थ हो श्रोता साथियों, तो वहाँ रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। लेकिन वही जहाँ सहयोग और संवेदनशीलता होती है, वहाँ प्रेम और विश्वास बढ़ता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या फिर कठिन परिस्थितियों में जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तब मानवता की असली तस्वीर हमारे सामने आती है। हम देखते हैं दोस्तों कि सहायता का भाव समाज में भाईचारे और एकता को मजबूत करता है। इससे लोगों के बीच विश्वास पैदा होता है और समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों सहायता करने से समाज भी मजबूत बनता है। साथ ही हम देखते हैं कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो लोग हमें याद रखते हैं। जैसे कि दुनिया में दोस्तों बहुत से लोग धनवान बने हैं, प्रसिद्ध भी हुए हैं, लेकिन समय के साथ लोग उन्हें भूलते गए। लेकिन जिन्होंने श्रोता साथियों मानवता की सेवा की है, दूसरों की हमेशा सहायता की है, उन्हें लोग हमेशा याद रखते हैं। ऐसे लोग दोस्तों समाज में प्रेरणा बन जाते हैं और उनका जीवन ये संदेश देता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, पैसे या पद से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और सेवा भावना से की जाती है। हम देखते हैं कि किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करने वाला व्यक्ति, किसी बीमार की सेवा करने वाला व्यक्ति या फिर किसी दुखी इंसान को सहारा देने वाला व्यक्ति हो, ये सभी दोस्तों समाज के असली नायक माने जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब तक बहुत बड़ा काम न कर ले तब तक सहायता का कोई महत्व नहीं है। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे कि किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करवाना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी पिलाना, किसी उदास व्यक्ति को हिम्मत देना या फिर किसी विद्यार्थी को सही सलाह या फिर मार्गदर्शन देना, किसी गरीब को भोजन देना और किसी परेशान व्यक्ति की बात सुन लेना। दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे कार्य हैं वो दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो काफी गहरा होता है। कई बार इंसान को पैसों से ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों अपनापन की और सहारे की। तो ऐसे में हमारी छोटी छोटी मदद किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। तो इस तरीके से कार्यक्रम के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों आपसे कि दूसरों की मदद करना मानव जीवन का सबसे सुंदर गुण है। यह केवल समाज को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी खुशहाल और अर्थपूर्ण बना देता है। साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दुख को समझे, जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए आगे आए। और हम देखते हैं कि हमारे इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रयास साथियों किसी के जीवन में बड़ी उम्मीद बन सकते हैं। ऐसे में हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सेवा, सहयोग और मानवता की भावना को हमेशा अपनाएंगे। हम केवल अपने लिए नहीं दोस्तों, बल्कि समाज और जरूरतमंद लोगों के लिए भी जिएंगे। याद रखिए साथियों, दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं कभी अंधेरे में नहीं रहता। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ दोस्तों अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले क्यों ना दोस्तों एक प्यारे से गीत के साथ पहले हम मनोरंजन कर लें।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नाग पंचमी के महत्व को लेकर।
0: जी हाँ।
1: जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि नाग पंचमी का क्या महत्व है और यह जो दिन है वो किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ कार्यक्रम में हम जानेंगे कि जीव जंतुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए हम अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं। बातें हमारी कार्यक्रम में ढेर सारी बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए आप सभी को करवाना चाहेंगे मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में।
0: तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं नाग पंचमी और जीव जंतुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसे लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति और मनुष्य के संबंध को केवल उपयोगी और लाभ के आधार पर नहीं देखा गया है, बल्कि उसमें श्रद्धा, संवेदनशीलता और प्रकृति से भी जोड़ा गया है।
1: बिल्कुल,
0: भारतीय परंपरा में श्रोता साथियों पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के जीव जंतु हमारे जीवन के विभिन्न अंग माने गए हैं। यही कारण है साथियों कि हमारे अनेक त्योहार प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का संदेश देते हैं।
1: जी हाँ,
0: नाग पंचमी भी साथियों एक ऐसा ही महत्वपूर्ण पर्व है जो नागों अर्थात सांपों के प्रति श्रोता साथियों श्रद्धा और उनके संरक्षण की भावनाओं को प्रकट करता है। हम देखते हैं कि नाग पंचमी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन अंजलि जी नाग देवता की पूजा की जाती है और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि तथा सुरक्षा की कामना की जाती है। धार्मिक दृष्टि से श्रोता साथियों यह पर्व भगवान शिव, नागों और भारतीय पौराणिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। वहीं पर्यावरणीय दृष्टि से श्रोता साथियों देखा जाए तो सांप हमारे परिस्थिति तंत्र के अत्यधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी जीव हैं। वे चूहों, अन्य छोटे जीव जंतुओं की संख्याओं को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों नाग पंचमी केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों को याद दिलाने का अवसर भी है।
1: बिल्कुल मनीषा, नाग पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह प्रकृति, पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश देने वाला त्योहार भी है।
0: जी हाँ,
1: भारत के अलग अलग राज्यों में यह पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। श्रोता साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि नागों को खेती और पर्यावरण के रक्षक के रूप में देखा जाता है। नाग पंचमी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जैसा कि आपने अभी बताया।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उनके परिवार की सुख समृद्धि, सुरक्षा और कल्याण की कामना की जाती है। भारतीय परंपराओं में विराजमान है कि भगवान विष्णु शेषनाग की संज्ञा पर विश्राम करते हैं और भगवान कृष्ण की कालिया नाग का दमन कर धर्म और न्याय की स्थापना की थी। इन कथाओं से नागों का धार्मिक महत्व स्पष्ट होता है। नाग पंचमी का संबंध केवल धर्म से नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मनीषा ग्रामीण क्षेत्रों में किसान मानते हैं कि सांप खेतों में रहने वाले चूहों और अन्य हानिकारक जीवों को नियंत्रित करते हैं। यदि सांप न हो तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसी प्रकार नाग खेती और खाद्य सुरक्षा में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने नागों के प्रति सम्मान की भावना विकसित की और उनके संरक्षण का संदेश समाज को दिया था।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के आधुनिक युग में मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन श्रोता साथियों इसके साथ ही प्रकृति का अत्यधिक दोहन भी हुआ है। जंगलों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण अंजलि जी हम देखते हैं कि कई प्रकार के जीव जंतु हैं वो संकट में हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में नाग पंचमी श्रोता साथियों नाग पंचमी जो पर्व है वो हमें समझने का अवसर देता है कि पृथ्वी केवल मनुष्य की ही नहीं, इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना एक महत्व रखती है। कहना चाहेंगे साथियों कि भारतीय धर्म और संस्कृति में नागों का विशेष स्थान है।
1: जी जी।
0: भगवान शिव के गले में नाग का होना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शिव और प्रकृति सभी जीवों का सम्मान हमारे लिए करना जरूरी है। भगवान विष्णु का शेष नाग पर रहना या संयम करना हम देखते हैं कि भारतीय धार्मिक परंपराओं में नागों के महत्व को दर्शाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, नाग पंचमी के दिन लोग घरों के द्वार पर नाग देवता की आकृति बनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दूध, फूल और प्रसाद अर्पित करते हैं। कई स्थानों पर मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है।
0: जी हाँ,
1: महिलाएं जो है वो अपने परिवार की सुख शांति और बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। गाँव में सामूहिक रूप से इस पर्व को मनाने की परंपरा भी देखने को मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: के समय में श्रोता साथियों ये समझना और भी जरूरी है कि सांप वन्य जीव है और उन्हें पकड़कर या परेशान करके पूजा करना उचित नहीं है। वन्य जीव संरक्षण कानूनों के अनुसार सांपों को नुकसान पहुंचाना अपराध है। इसलिए नाग पंचमी का सही संदेश यही है कि हम प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान करें और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखें। श्रद्धा और आस्था के साथ साथ हमें वैज्ञानिक सोच और पर्यावरण जिम्मेदारी को भी अपनाना चाहिए। नाग पंचमी हमें यह भी सिखाती यही है कि पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का अपना महत्व है, चाहे वह कितना छोटा या भयावह क्यों न लगे। प्रकृति के संतुलन में उसकी भूमिका सांपों के प्रति डर की बजाय जागरूकता की समझ और विकसित करना आवश्यक है। यदि कहीं सांप दिखाई दे तो उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय वन विभाग या प्रशिक्षित बचाव दल को सूचना दी जानी चाहिए। वागड़ क्षेत्र सहित राजस्थान के अनेक ग्रामीण इलाकों में नाग पंचमी लोक परंपराओं लोक गीतों के साथ मनाई जाती है। लोग इस अवसर पर अच्छी वर्षा, अच्छी फसल और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। श्रोता साथियों, यह पर्व मनुष्य और प्रकृति के बीच प्रेम, विश्वास और सह अस्तित्व का प्रतीक है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से नाग पंचमी और जीव जंतुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें हमारे श्रोता साथियों से आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही कहना चाहेंगे कि नाग पंचमी हमें केवल पूजा पाठ का संदेश नहीं देती, बल्कि ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी देती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है मनीषा कि हमारी धरती पर रहने वाला हर जीव हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तभी प्रकृति भी हमें स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और समृद्ध भविष्य प्रदान करेगी। इसलिए नाग पंचमी पर हम संकल्प लें कि हम वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा देंगे। यही नाग पंचमी का वास्तविक संदेश और महत्व है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे, पशुओं, पक्षियों, कीटों और सूक्ष्म जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहा जाता है। साथियों, जैव विविधता किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की शक्ति और स्थिरता का आधार होते हैं। यदि किसी एक जीव की संख्या अचानक कम हो जाए अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि पूरा पारिस्थितिक तंत्र है वो समाप्त होने लगता है। तो श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि हमें हर जीव की रक्षा करनी है और उनके संरक्षण के लिए हमें महत्वपूर्ण योगदान देना है। इसलिए साथियों, प्रकृति में छोटे से छोटा जीव हमारे लिए महत्व रखता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल बड़े या सुंदर जानवर ही संरक्षण के योग्य हैं। एक छोटी सी चींटी से लेकर विशाल हाथी तक हमारे सभी पारिस्थितिक तंत्र के हिस्से में आते हैं और उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल मनीषा, जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमारे मन में पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जंगलों की तस्वीर उभरती है, लेकिन प्रकृति का यह सुंदर संसार जीव जंतु के बिना अधूरा है। धरती पर रहने वाले छोटे से छोटे कीट से लेकर विशाल हाथी तक, जैसा कि आपने बताया, हर जीव का अपना महत्व और योगदान है। जीव जंतु केवल जंगलों की शोभा नहीं बढ़ाते बल्कि वे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोता साथियों, जीव जंतु की प्राकृतिक जो खाद्य श्रृंखला है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि किसी एक जीव की संख्या अत्यधिक बढ़ जाए या कम हो जाए तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए सांप चूहों की संख्या को नियंत्रित करते हैं, जबकि पक्षी कीटों को खाते हैं और फसलों की रक्षा करते हैं। यदि ये जीव न हो तो खेती को भारी नुकसान हो सकता है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जीव जंतुओं का महत्व और भी अधिक है। पशुपालन लाखों परिवार की आजीविका का आधार है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट और जैसे पशु दूध वाले जो हैं, ऊन जो देते हैं, खाद्य हैं, इनसे आय का महत्वपूर्ण स्रोत हमें मिल पाता है। इनके माध्यम से ग्रामीण परिवार अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। पशुधन को गांव की संपत्ति माना जाता है क्योंकि ये परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत लंबे समय तक कृषि प्रधान देश रहा है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, भारतीय त्योहारों का संबंध कृषि, ऋतु और प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। नाग पंचमी वर्षा ऋतु में आती है। वर्षा किसानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि श्रोता साथियों, कृषि का बड़ा भाग है वो वर्षा पर निर्भर रहता है। खेतों और गांवों में सांपों का दिखाई देना सामान्य बात है। साथियों, खेतों में सांप है वो चूहों का शिकार करते हैं। इस तरह वे फसल की रक्षा करने में अपना अप्रत्यक्ष योगदान देते हैं। पुराने समय में श्रोता साथियों, वैज्ञानिक जानकारी सीमित होने के कारण प्रकृति के अनेक नियमों को हम धार्मिक ग्रंथों और कथा कहानियों के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। नाग पंचमी को भी श्रोता साथियों, इसी व्यापक प्रकृति और संस्कृति का संबंध हमें देखने को मिलता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि यह पर्व हमें यह संदेश दे सकता है कि किसान और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि खेतों की मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे और जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे तभी हमारी कृषि है वो सुरक्षित रहेगी।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसा कि हम पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सभी जीवों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी जीवों के माध्यम से खाद्य जो श्रृंखला है वो पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम जान पाए कि इनमें से किसी की कमी होती है या किसी की वृद्धि होती है तो इसका नुकसान हमारी फसलों को और अन्य चीजों को होता है। ऐसे में श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि हमें वन्य जीवों का संरक्षण करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वन्य जो है वो प्रकृति का संरक्षण करने में हमारे साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहना चाहेंगे कि जीव जंतु पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। हैं। गिद्ध और अन्य मृतभक्षी जो जीव हैं वो वातावरण को साफ रखने का कार्य करते हैं। वे मृत पशुओं को खाकर बीमारी को फैलाने से रोकते हैं। इसी प्रकार केचुआ जो है वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है और भूमि को खेती योग्य बनाता है। मधुमक्खियां, तितलियां हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये परागण की प्रक्रिया में मनीषा सहायता करती हैं, जिससे फलों, सब्जियों और अनाज की पैदावार बढ़ती है।
1: जी हाँ,
0: परागण करने वाले जीव समाप्त हो जाए तो खाद्य उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए छोटे जीव भी हमारे जीवन के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की बड़े जीव। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जीव जंतुओं का महत्व और अधिक है। पशुपालन लाखों बकरियों की आजीविका का, लाखों परिवारों की आजीविका का आधार है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, ये जो सभी हैं वो लोगों को आय का स्रोत देते हैं। आज हम देखते हैं कि समय में बढ़ता शहरीकरण, जंगलों की कटाई, प्रदूषण और अवैध शिकार के कारण अनेक जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और उनके विलुप्त होने के कगार पर है। यदि यह स्थिति जारी रही तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि मनुष्य और पशु पक्षियों के संबंध की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि मनुष्य ने प्राचीन काल से ही पशु पक्षियों के साथ संबंध बनाया है।
0: बिल्कुल,
1: कुत्ते घरों की रक्षा करने में सहायक होते हैं, घोड़े और बैल व परिवहन के लिए कृषि में उपयोगी होते हैं। गायों से श्रोता साथियों दूध प्राप्त होता है और अनेक पशु हैं श्रोता साथियों ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बने हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन मनुष्य का दायित्व केवल पशुओं से लाभ प्राप्त करना नहीं है, उनके प्रति दया और अपनी जिम्मेदारी को समझना भी है। आज अंजलि जी, हम देखते हैं कि शहरों में बड़ी संख्या में पशु पक्षी, छोटे जीवों के साथ लोग रहते हैं। पेड़ों पर घोंसला बनाने वाले पक्षी, पार्कों में रहने वाले गिलहरियां, वर्षा के समय में दिखाई देने वाले मेंढक और अनेक प्रकार के कीट है वो हमारे शहरी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका हिस्सा है। यदि हम पेड़ों को अनावश्यक रूप से काटेंगे, जल स्रोतों को दूषित करेंगे और प्राकृतिक स्थानों को श्रोता साथियों नष्ट करेंगे, तो हम देखते हैं कि इन जीवों के रहने के स्थान है वो कम हो जाएंगे। इसलिए साथियों कहना चाहेंगे कि मनुष्य और जीव जंतुओं के बीच सह अस्तित्व की भावना भी बहुत जरूरी है। हमें ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए श्रोता साथियों, जिसमें विकास के साथ साथ हमारी प्रकृति की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। आगे भी बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: पकड़ना, उसके साथ प्रदर्शन करना, भीड़ में उसे परेशान करना उसके लिए भी और मनुष्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि धार्मिक आस्था और वन्य जीव संरक्षण एक दूसरे की विरोधी नहीं। हम नाग देवता की पूजा प्रतीकात्मक रूप से कर सकते हैं और साथ ही वास्तविक सांपों और उनके प्राकृतिक आवास को भी सुरक्षित रहने दे सकते हैं। यदि घर या खेत में सांप दिखाई दे तो उसे मारने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव या आप कहीं अन्य जगह पर आप उसे छोड़ सकते हैं जिसे वहाँ संरक्षण मिल सके।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि जीव जंतु केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं है बल्कि वे हमारे जीवन की निरंतरता और पृथ्वी की समृद्धि के आधार हैं। जिस प्रकार एक परिवार का हर सदस्य महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार प्रकृति के परिवार में हर जीव की अपनी एक विशेष भूमिका है। कोई जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाता है तो कोई जो जीव है वो बीजों को फैलाने में मदद करता है, तो कोई फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रित करने में अपना योगदान देता है
0: जी हाँ।
1: तो कोई पर्यावरण को स्वस्थ रखने में योगदान देता है। श्रोता साथियों, प्रकृति का यह अद्भुत तंत्र तभी सुचारू रूप में चलता है जब सभी जीव सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। आज आवश्यकता मनीषा इस बात की है कि हम विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए, जंगलों, जल स्रोतों और प्राकृतिक वस्तु की रक्षा करें ताकि जीव जंतुओं को सुरक्षित जीवन मिल सके। बच्चों को पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता विकसित करें। समाज में यह संदेश फैलाएं कि जीवों की रक्षा करना केवल सरकार या वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का साझा दायित्व है। हम ऐसा वातावरण बनाए श्रोता साथियों जहाँ हर जीव सुरक्षित महसूस करे, जहाँ प्रकृति का सम्मान हो, जहाँ आने वाली पीढ़ियां भी पक्षियों के मधुर चहचहाट, तितलियों की उड़ान, जंगलों की हरियाली और वन्य जीवों की विविधता का आनंद ले सके। प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी ही हमारे भविष्य की सुरक्षा है। जीव जंतुओं की रक्षा करना वास्तव में जीवन की रक्षा करना है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आज पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है वो पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। बढ़ता प्रदूषण, वनों की कटाई, जल स्रोतों का प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन है वो जीव जंतुओं के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: जीवों की रक्षा के लिए हमें उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना होगा। जंगलों में श्रोता साथियों पेड़ पौधों के समूह को रहने देना है क्योंकि हम देखते हैं कि वे हजारों जीवों के लिए उनका घर होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: नदियाँ केवल पानी का स्रोत नहीं साथियों, वे मछलियों, पक्षियों, जलीय पौधों और अन्य सूक्ष्म जीव ही उनके जीवन का आधार है। खेत केवल मनुष्य के भोजन का स्रोत नहीं है, वे कीटों, पक्षियों, सांपों, मेंढकों और अनेक जीव जंतु है उनके निवास का स्थान है।
1: बिल्कुल,
0: हम अपने स्तर पर छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, लेकिन श्रोता साथियों पेड़ लगाना, पानी को प्रदूषित होने से बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पक्षियों के लिए गर्मियों में पानी रखना, घायल पक्षियों की सहायता करना और वन्य जीवों को परेशान न करना, ये सारे हमारे जीवन के दायित्व है जो हमें निभाने चाहिए। श्रोता साथियों इससे हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में हम अपना योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, जब हम किसी जंगल, खेत, नदी या पहाड़ को देखते हैं तो हमें केवल प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे अनगिनत जीव जंतुओं का योगदान छिपा होता है। ये जीव हमारी धरती को जीवित बनाए रखते हैं और जीवन के चक्र को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। यदि हम वास्तव में एक सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य चाहते हैं श्रोता साथियों, तो हमें जीव जंतुओं के अस्तित्व को भी उतना ही महत्व देना होगा जितना अपने स्वयं के जीवन को हम देते हैं। आज मानव ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति की है लेकिन पृथ्वी द्वारा निर्मित किसी भी जीव की भूमिका को पूरी तरीके से नहीं निभा सकता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी के साथ सहयोग का जो विकास है वही सही मार्ग है। जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता, करुणा और संरक्षण की भावना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है मनीषा बल्कि हमारे संस्कारों और मानवीय मूल्यों को भी मजबूत बनाती है।
0: जी
1: इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान रहे हैं। आगे भी कुछ बातें हैं वो यूं ही बनी रहेंगी लेकिन वे कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: मेरा आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता,
0: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: नमस्कार।
1: साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पाराशर। स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कल रविवार का दिन था और कल हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी साथियों, लेकिन जैसा कि आज फिर से हम हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश के माध्यम से, आपसे रूबरू हो रहे हैं साथियों फिर से नई फरमाइश के पिटारों के साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि फरमाइश का सिलसिला हमारा और आपके बीच बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक, और इसी बीच आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। साथियों अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं, आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना क्या है श्रोता साथियों, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं, वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643 पर। साथियों इस नंबर को मैं फिर से बताना चाहूँगी क्योंकि इसी नंबर के ज़रिए आप अपने राय सुझाव और अपनी फरमाइश के गीत हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों हमें इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइश का सिलसिला शुरू हो चुका है, ढेरों फरमाइशें आ ही रही हैं, तो मैं बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों पहली फरमाइश हमारे बीच आई है वाड़ी कला से, फिल्म का नाम है बेवफा, गीत के बोल है मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक दिलरुबा है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे भूमिका कुंवर, नरेश चौहान, मनोज कुमार मीणा जी, मेघराज मीणा जी, सुरेश विक्रम सिंह जी। धनपुरा से जुड़ रहे हैं लक्ष्मण चौधरी, चंद्रपाल राय प्रसाद जी, महावीर जी, देवीलाल जी। गांटोल से हैं राजाराम मनसाराम, संदीप प्रतापपुर से जुड़ना चाह रहे हैं, और भी श्रोता साथी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। पाटी कला से पुष्पा कुंवर, हेमंत टेलर, आशाराम, रमेश लाल, प्यारेलाल, श्यामलाल, घनश्याम, राधेलाल, लाला राम जी, अरविंद, राहुल, जसवंत जी, मेघराज मीणा जी, कपिल शर्मा जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक दिल रुपा है।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक दिलरुबा है, इस गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, फिल्म का नाम है जीत। गीत के बोल हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। फरमाइश करता है जो जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। नाम बताना चाहूंगी दोस्तों, घाटोल से जुड़ रहे हैं सत्येंद्र कुमार जी, नरेश चौहान, जयवर्धन मीनारिया जी, सत्यम मीणा, शिवम संजीव डाबेराव जी, और भी दोस्त तलवाड़ा से हैं, कमलेश पुरोहित, रोहित पुरोहित, वजेंद्र कुमार, अर्जुन जी, अरुण गणेश लाल जी, जसवंत संजय, अखिलेश मीणा जी, हेबराज मीणा, चरण सिंह, श्याम प्रसाद जी, और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, सुनना चाह रहे हैं इस गीत को, श्रोता साथी हैं। बताना चाहूँगी जुड़ रहे हैं सतराम जी, हीरालाल हेमंत, आकाश देवेश जी, ये घाटोल से ही जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी, हरेंद्र विकास, दलपत, श्यामलाल, रामलाल, पंकज, राहुल शर्मा, मेघराज मीणा जी रायबरेली से जुड़ रहे हैं। और भी साथी रायबरेली से अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में, हेवराज मीणा, हरिशंकर गमराज जी, आनंद प्रदीप, सिरोमान संतोष, सुरेश, मोहन कल्याण, सत्यम, सीताराम जी, संजय सतराम जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइशकर्ताओं के द्वारा भेजा गया बहुत ही प्यारा सा गीत था, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। इसी गीत के बाद साथियों फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी पाड़ी कला से। फिल्म का नाम है, सुनना चाह रहे हैं हमारे श्रोता साथी, तुमसे अच्छा कौन है। फिल्म का गीत आँख है भरी भरी। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं आपको बताना चाहूँगी रायबरेली से मेघराज मीणा, राहुल शर्मा, पंकज शर्मा जी, रामलाल श्यामलाल तनपत जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, विकास, हरेंद्र, विपिन शर्मा, देवेश, आकाश, हेमंत, हीरालाल सतराम जी, घनश्याम, हेराज मीणा जी, हरिशंकर घाटोल जी, धमराज जी, धर्मराज जी, आनंद, प्रदीप सिरोमान, संतोष जी, ये घाटोल से जुड़ना चाह रहे हैं। इसी बीच तलवाड़ा से भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। सतराम से सतराम जी, संजय, सीताराम, सत्यम, स्वयं स्वयं जी, कल्याण जी और मोहन जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। हंसराज, विकास, विदेश चौहान, मिथिलेश, वीरेंद्र सियापुर से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र कटारा, राधेलाल, संदीप चौहान, रामेश्वरम, अध्यक्ष सुंदरलाल, प्रदीपक कुमार, अनूप चौहान, ये रायबरेली से जुड़ रहे हैं। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आँख है भरी भरी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।
1: बेटा, आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो समाने को जीत पाए।

श्रोता साथियों, इस फरमाइश के गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। फिल्म का नाम है राजा। गीत के बोल हैं, झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में छत्तीसगढ़ से निकिता शर्मा, अरविंद, राजेश शर्मा, राजकुमार नरेश चौहान, मुकेश शर्मा, महेंद्र इमरत जी। इसी बीच गणपतपुरा से हैं वीरेंद्र, शैलेंद्र, सत्यम मीणा जी, प्राणी देव जी, सुरेंद्र मीणा, देवेंद्र प्रजापत, अभिनव दयाल शर्मा जी। इसी बीच हमारे और भी साथी जुड़ रहे हैं, अवधेश, रामेश्वर, गणेश लाल, संदीप चौहान, राधेलाल जी और भी साथी हैं जुड़ना चाहते हैं इसी गीत के साथ में। दानपुर से मिथिलेश तिवारी, वीरेश चौहान, विकास जी, सुंदरलाल कोपरा जी और दीपक कुमार, अनुप चौहान, मेघराज मीणा जी। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत आया है, श्रोता साथियों बताना चाहूँगी, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हंसराज विकास विदेश चौहान जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, पन्नालाल जसवंत कुमार, रविशंकर गुप्ता, रमेश प्रसाद, बंटी प्रजापत, मनोहर हनुमंत जी ये सुरपुर से जुड़ रहे हैं। बड़ोदिया से हैं हनुमंत ओमकार रावत, सीताराम हरादेलाल, दिनेश चंद्र विशाल, सतीश पांडे, मेघराज मीणा जी। कुशलगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं सीताराम कागड़ा, महेंद्र डामोर, हरिचंद कुमरा, हरिचरण कुमार, अभिषेक कटारा, अनिल डामोर, सुरेंद्र चौहान, श्याम सुंदर शंकर जी। सियापुर से जुड़ रहे हरिंद्र कुमार, दयाराम प्रजापति, हरिशंकर प्रकाश, दीपचंद्र जी और भी साथी जुड़ रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, मानसवाड़ा से ही जुड़ रहे हैं देवेंद्र वीरेंद्र कुमार, अभिषेक जैन जी, संदीप चौहान जी, संदीप जैन, दीपक कुमार, रतन कुमार, प्रमोद प्रजापत, देवी राम कटारा, सीताराम कटारा, केशव प्रसाद, लाला राम, दिनेश कटारा, सुरेंद्र अरुण, अक्षय कुमार जी, प्रेम डामोर, मेघराज मीणा जी ये रायबरेली से जुड़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, फिल्म का नाम है जान, गीत के बोल हैं जान ओ मेरी जान। इस गीत को आवाज़ दी है मनोहर उदास अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। आपको नाम बताना चाहूँगी सूरपुर से, दलपत जी, बलवीर कुमार, सोनू, नीलेंद्र कुमार, नरेश कुमार जी, नीलेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार जी, कैप्टन चौहान जी, मदादिन कटारा, रामपलाल डामोर, आनंद कुमार, हीरालाल, रामलाल, दीनदयाल, दिनेश दलाल, धर्मेंद्र चौहान और विश्रुता साथी हैं जो रायबरेली से जुड़ रहे हैं, बादाम डामोर, मेघराज मीणा जी, अंकुर सामरिया जी, जागृति वर्मा जी और विश्रुता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। घाटोल से विजय कुमार, विक्रम, राघवेंद्र कुमार, जसविंद्र कुमार, गिद्धिराज रामेश्वरम, राहुल कुमार, राधेलाल, अरविंद, संजय कुमार, सियाराम, जालाराम और महिकराज मीणा जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। और भी श्रोता साथी, गंगाराम प्रजापति, अभिषेक वर्मा, शिशुपाल, सिद्धार्थ पंड्या, मानसिंह किटारा जी ये बांसवाड़ा से जुड़ रहे हैं, कुशलगढ़ से हैं, महेश चंद्र शर्मा, शिवदयाल, संसुदयाल, राकेश शर्मा, राजेश शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, राजेंद्र प्रसाद जी, किशन लाल, पूरण कुमार, अखिलेश कुमार, मेघराज मीणा जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं जान ओ मेरी जान। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की और अगली फरमाइश का गीत है घायल फिल्म का गीत दिल साथ नहीं जब से पागल ये जवानी है कोई जाए तो ले आए। इस गीत को आवाज़ दी अलका याग्निक जी ने। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं कोटा से रोहित सामरिया, रोहित रुमित जी, माजिद खान, निवेदिता, आकिब जी, पिंकेश जी, हंसराज, शालिनी जैन, मिनल जी, सोहन नाथ जोगी जी। ठिकरिया बड़ोदिया से जुड़ना चाह रहे हैं कमलेश बुनकर, चंद्रपाल कुशवाहा, व्याख्या सोनी, जलज जोशी, हेमंत टेलर, धनराज जी। रायबरेली से हैं मेघराज मीणा, अखिलेश कुमार, पूरण कुमार, किशनलाल, सेवेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार, राजेंद्र प्रसाद, राकेश शर्मा, शंभु दयाल जी, विमला खट्टक, अरजीत अमरजीत खट्टक, सुनलाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक। तलवाड़ा से हैं शिवदयाल, महेश चंद्र शर्मा, मानसिंह दिमागा जी, सिद्धार्थ पंड्या, शिशुपाल, अभिषेक वर्मा, गंगाराम जी। और भी दोस्त हमारे इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, सुन रहे इस गीत को नरेश चौहान जी, हेमंत टेलर, अजय कुमार, दीपक अजीत कुसुम, दलपत्य जी, कला सिंह जी, कल्याण सिंह जी, पूनम कुमार जी, भूपत कुमार जी, राधेश्याम शर्मा, सीताराम घनश्याम दास, लाला राम लक्ष्मण, प्रवीण कुमार, हरिशंकर जी, ये सुरपुर से जुड़ रहे हैं। तो आइए साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं कोई जाए तो ले आए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है हीरो, गीत की बोल ही तू मेरा जानू है। इस गीत की फरमाइश करता है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाह, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशाने निमित आहूजा जी। पटेल नगर मालोड से जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गंदीप झंझोरिया, गुड्डू जी झंझोरिया। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तू मेरा जानू है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे मैं तेरा जानू हूँ। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है रंग। गीत के बोल ही तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव और पन्नव जी नामदेव। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, बब्बन मीनू, कान्हा हरिप्रिया जी ठाकुर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। इस गीत के अनुरोध करता है बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरी अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है। फिल्म का नाम है रंग और इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जौनपुर से। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। इस गीत की फरमाइश करता है अब्दुल अंसारी, मजहर अली अंसारी, अरमान अंसारी, नवेद अंसारी और अजरा जी। बनारस से जुड़ रहे नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से जून डिकिस्टो, रोजी डिकिस्टो, पल डिकिस्टो, विलेसी डिकिस्टो। उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इस गीत के अनुरोध करता है भागपत सिंह, अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। मस्तानपुरा से जुड़ रहे हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपनव जी नामदेव। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दिल्ली से। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल हैं आंखें खुली हो या हो बंद। इस गीत की फरमाइश करता है दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशव खुराना, रिधांजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शिंदे, प्रतिभाजी गुड़ाने, महेश राम टेके जी। इस गीत के अनुरोध करता है भागवत से आसिफ अली खान, मोमिन अनाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इसी भी जुड़ना चाह रहे भागवत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन जी।

0: तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है मोहब्बती और गीत की बोल है आंखें खुली हो या हो बंद। तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।
1: मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था

0: Over.
1: आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुर्गा कोलिनी हांसी से। फिल्म का नाम है आशा, गीत की बोल है शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत की फरमाइश करता है दुर्गा कोलिनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू टप्पू जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बिलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खटक, प्रमिला खटक, चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं सुरेश डोमिन और शालिनी डोमिन, लाहौरा से जुड़ रहे हैं डोली प्रभाव और प्रभा जी, जलालाबाद वेस्ट से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी निमित आहूजा जी, धनुरी तेलीवाला से जुड़ रही निसार सलमानी, नुसार सलमानी, बेबी आलिया। इस गीत के अनुरोध करता है वासिम महाराष्ट्र से मास्टर विठ्ठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायराजी सुरुषी। रघुवीर नगर दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही शीशा हो या दिल टूट जाता है। फिल्म का नाम है आशा और इस गीत के बोल ही और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। गीत के बोल थे, शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बक्सर से। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी। इस गीत की फरमाइश करता है बक्सर से बेबी अंसारी, डब्ल्यू जी अंसारी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्य।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है डुमराव सी। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करता है पुराना तालाब सी, वलीउल्लाह अंसारी, इस्मानाज अंसारी, शबनम बानो जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जेल रोड बक्सर से राज एडी अंसारी, फातमा नाज जी। इस गीत की अनुरोध करता है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला जी अनेजा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे दिल्ली से प्रकाश खोरवाल, रानी खोरवाल, प्रकाश जी खोरवाल। इस गीत की अनुरोध करता है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी निमित आहूजा जी। संग मुंगी से जुड़ना चाह रहे बाबा साहेब कणक्कर, साकरबाई कणक्कर, परमेश्वरी रोहिणी और कणक्कर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। भद्रावती से जुड़ रहे हैं अब्दुल लोहीवाला, शाहिदा शेख, शाहिल शेख, अब्दुल्ला जी शेख। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, आनंद राठौड़, श्रीमती गिरिजा जी राठौड़, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, बीबी वेदई जोशी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफ्फा डावर जी। मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं श्रीमती जयवंती केवट। जगतपुर बक्सर से जुड़ रहे हैं पूनम जी नायडू। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज के शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे, मीठी यादें। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं। इसी के बाद दोस्तों, शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे कसर, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है, जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: आज के सुविचार।
1: सत्य तो ये है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है, उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में शिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं।
2: शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना ढूंढा जाता तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। अर्थात परंपरा को पूर्णता छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है और परंपरा का अंध अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता।
1: कहते हैं हंस के पास नीर क्षीर विवेक होता है। दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए, जो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है? स्वयं विचार कीजिएगा।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि किसी की सफलता अगर चुभती है तो हमें ठहर कर सोचना चाहिए। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि सफलता शब्द सुनते ही हमारे मन में खुशी, उपलब्धि, मेहनत और सपनों की तस्वीर उभरती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कशिश कि जब हमारे आसपास का कोई व्यक्ति सफल होता है तो हमें खुशी होने के बजाय भीतर से अजीब सी बेचैनी महसूस होती है।
0: बिल्कुल,
1: किसी दोस्तों को अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई परीक्षा में बेहतर अंक ले आए, किसी परिचित का व्यवसाय चल पड़े, किसी की कला को पहचान मिल जाए या कोई अपने सपनों को पूरा कर ले, तो हम उसके लिए खुश होने के बजाय खुद से उसकी तुलना करने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मन में सवाल आता है कि उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, उसे सफलता इतनी जल्दी क्यों मिल गई, मैं पीछे क्यों रह गया। श्रोताओं, अगर कभी आपके मन में भी ऐसा विचार आए तो खुद को बुरा इंसान समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही ठहर कर खुद से बात करने की जरूरत है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से इस विषय को लेकर हम ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि बात कर रहे हैं कि किसी की सफलता चुभती है तो ठहर कर सोचना हमारे लिए जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि आपने गीत से पहले युवा साथियों को जागृति जी बताया था कि वर्तमान में तुलना की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हर कोई किसी के कार्य या सफलता को देखकर कह सकते हैं कि मन में ईर्ष्या की भावना पैदा कर लेता है
1: जी,
0: और ये सोचने लगता है कि उसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। ऐसे में श्रोता साथियों, में समझने की जरूरत है कि सफलता पाने के लिए मेहनत करना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल,
0: युवावस्था में हम अपने भविष्य को लेकर बहुत सारे सपने देखते हैं साथियों। पढ़ाई, करियर, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्वतंत्रता, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की हमारे युवा साथी इच्छा रखते हैं जागृति जी। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारा कोई साथी हमसे पहले किसी मुकाम पर पहुंच गया है तो कभी कभी हमारी अपनी अधूरी इच्छाएं हमें उसकी सफलता से जोड़कर दिखाई देने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: असल में श्रोता साथियों, कई बार हमें सामने वाले की सफलता नहीं चुभ रही होती बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति से असंतोष चुभ रहा होता है। इसलिए ऐसी भावना अगर आपके मन में आए तो सामने वाले को छोटा करने के बजाय आप खुद से ये पूछिए कि मुझे उसकी सफलता से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। क्या आपको ये लगता है कि आप पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं? क्या श्रोता साथियों, आपके लक्ष्य को लेकर आप स्पष्ट नहीं है? या फिर आप अपनी जो तुलना है वो दूसरे से क्यों कर रहे हैं? इसी के आगे आप खुद से ये भी पूछे कि आपको डर किस बात का है और उस डर के कारण आप पीछे क्यों रह जा रहे हैं।
1: बिल्कुल कशिश, इन सवालों के जवाब हमें अपने बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। श्रोता साथियों, आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया ने तुलना को और आसान बना दिया है। हमें लोगों की जिंदगी का केवल चमकता हुआ हिस्सा ही दिखाई देता है, जैसा कि हम हर कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं। किसी की उपलब्धि दिखाई देती है लेकिन उसके पीछे की मेहनत हमें नहीं दिखाई देती। किसी की नौकरी दिखाई देती है लेकिन उसके संघर्ष नहीं दिखाई देते। किसी की सफलता दिखाई देती है लेकिन उसकी असफलताओं को हम नहीं देखते हैं। और फिर हम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की चुनी हुई तस्वीरों और उपलब्धियों से करने लगते हैं। यहीं से मन में हीन भावना और बेचैनी जन्म ले सकती है। श्रोता साथियों
0: जी जी,
1: इसलिए याद रखिए कि हर व्यक्ति की शुरुआत अलग होती है, परिस्थितियां अलग होती है, संसाधन अलग होते हैं और सफलता का समय भी अलग होता है। इसलिए किसी और की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को असफल मत मानिए।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ दोस्तों, किसी की सफलता को प्रेरणा बनाइए, प्रतियोगिता नहीं। यानी कि अगर आपका कोई दोस्त सफल हुआ है तो उसके सामने खुद को छोटा करने की आपको जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: बल्कि आप ये सोचिए कि अगर वह कर सकता है तो मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकता हूँ। उससे श्रोता साथियों, आप कुछ सीखिए, उसकी मेहनत के बारे में पूछिए, गलतियों से समझिए और रणनीति से प्रेरणा लीजिए। लेकिन उसकी सफलता की नकल मत कीजिए युवा साथियों, क्योंकि प्रेरणा हमें आगे बढ़ाती है जबकि अंधी तुलना हमें भीतर से कमजोर कर सकती है। जागृति जी
1: बिल्कुल,
0: हर युवा की सफलता का रास्ता अलग हो सकता है। किसी के लिए सरकारी नौकरी सफलता है तो किसी के लिए अच्छा व्यवसाय, किसी के लिए अपने परिवार को संभालना सफलता है तो किसी के लिए कोई हुनर सीखना और किसी के लिए समाज के लिए काम करना।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, सफलता की परिभाषा भी अपनी आप बनाइए।
1: जी हाँ कशिश, और हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जब किसी की सफलता हमें चुभे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुक जाइए। अपने आप से पूछिए कि मैं पिछले एक साल में कितना आगे बढ़ा हूँ।
0: बिल्कुल,
1: हो सकता है आज आपके पास वो नौकरी ना हो जिसकी आपने कल्पना की थी, लेकिन आपने कोई नया कौशल जरूर सीखा है। हो सकता है आपका व्यवसाय अभी छोटा हो लेकिन आपने शुरुआत तो की है। हो सकता है कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हुए हो लेकिन आपने अपनी कमियों को पहचाना हो। और हो सकता है कि आपकी मंजिल अभी दूर हो लेकिन आपके कदम पहले से आगे बढ़ रहे हो।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए अपनी प्रगति को केवल अंतिम परिणाम से मत मापिए। कभी कभी छोटी प्रगति भी बड़ी जीत होती है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,
0: तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी इस कार्यक्रम में कि किसी की सफलता चुभती है तो हमें ठहर कर सोचना चाहिए। हमने जाना था सफलता चुभने का मतलब क्या होता है, तुलना कहाँ से शुरू होती है, किसी की सफलता को प्रेरणा बनाना है प्रतियोगिता नहीं। ये सारी बातें हमने गीत से पहले आपसे करी थी। यही जानते हैं श्रोता साथियों कि ईर्ष्या को संकेत की तरह देखना है, यानी कि अगर किसी की सफलता देखकर मन में ईर्ष्या या जलन महसूस होती है तो उसे दबाने की बजाय समझने की कोशिश भी करनी है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार यही भावना हमें बताती है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। मान लीजिए श्रोता साथियों कि हमारा दोस्त अच्छा गायक बन गया हो और आपको उसकी लोकप्रियता देखकर बेचैनी हुई हो सकता है कि आपके भीतर भी संगीत के लिए जुनून हो जिसे आपने कभी समय ही नहीं दिया।
1: बिल्कुल,
0: किसी की नौकरी देखकर आपको बेचैनी हुई, शायद आपको भी अपने करियर को लेकर गंभीरता से योजना बनाने की जरूरत है। किसी के व्यवसाय को देखकर मन परेशान हुआ, शायद आपके भीतर भी कुछ नया करने की इच्छा है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए भावनाओं को नकारने के बजाय उसे दिशा दीजिए, ईर्ष्या को ऊर्जा में और तुलना को आत्मचिंतन में जरूर बदलिए।
1: जी हाँ युवा साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें सभी को एक ही समय पर एक ही स्थान पर पहुंचना होता है।
0: बिल्कुल,
1: किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, और किसी को कई प्रयासों के बाद मिलती है जागृति जी, तो किसी को तो अपना रास्ता बदल कर फिर सफलता मिलती है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो पहले सफल हुआ वही बेहतर है। एक पेड़ जल्दी बढ़ सकता है, दूसरा धीरे, लेकिन दोनों की अपनी जगह और अपनी उपयोगिता होती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह आपका सफर भी आपका अपना है, इसलिए किसी के सफलता देखकर ये मत सोचिए कि वो मुझसे आगे निकल गया है, बल्कि ये सोचिए कि उसकी यात्रा अपनी है और मेरी यात्रा अपनी है।
0: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि दूसरों की सफलता का सम्मान हमें भी करना चाहिए, क्योंकि श्रोता साथियों, किसी की सफलता का सम्मान करना केवल उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है बल्कि हमारे अपने व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम जब दूसरों की उपलब्धियों पर दिल से बधाई देना सीखते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ती है। दूसरे की सफलता को स्वीकार करना ये नहीं बताता श्रोताओं कि हम उससे कम हैं, बल्कि ये बताता है कि हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। जिसे अपनी मंजिल पर विश्वास होता है वह हर सफल व्यक्ति को खतरे की तरह नहीं देखता, दूसरों की सफलता से सीखता है और अपनी यात्रा जारी रखता है।
1: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं साथियों कि आज सोशल मीडिया पर सफलता का प्रदर्शन बहुत ज्यादा दिखाई देता है। नई नौकरी, नए कार, यात्रा, पुरस्कार, उपलब्धि, स्टेज, फोटो, सब कुछ हमारी स्क्रीन पर आता रहता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि सोशल मीडिया किसी व्यक्ति की जिंदगी का पूरा सच नहीं दिखाता।
0: जी हाँ,
1: इसलिए जब भी किसी की उपलब्धि देखकर आपको लगे कि सब आगे निकल रहे हैं और आप पीछे रह गए हैं तो फोन थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और अपने जीवन की वास्तविकता को देखिए साथियों। अपने लक्ष्य को लिखिए, अपनी पिछली उपलब्धियां याद कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए और अगला छोटा कदम तय कीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी देखने से आपका भविष्य नहीं बदलेगा लेकिन अपने लक्ष्य की ओर उठाया गया एक कदम जरूर बदल सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की सफलता आपको बहुत प्रभावित करती है, अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता उसकी बुराई करना, उसकी कमियां निकालना है और मन में नकारात्मकता रखना।
1: बिल्कुल,
0: दूसरा रास्ता ये कि हमें समझना है कि मुझे भी अपने जीवन में मेहनत और सुधार की जरूरत है, क्योंकि दूसरों को नीचे खींचने में जो ऊर्जा खर्च होती श्रोता साथियों, वही ऊर्जा अगर अपने विकास में लगाई जाए तो परिणाम बदल सकते।

0: सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसी की सफलता को अपनी असफलता का प्रमाण मत बनाइए, उसे अपने विकास की प्रेरणा जरूर बनाइए।
1: जी हाँ साथियों, आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और उसी आत्मचिंतन के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि मुझे उसकी सफलता से वास्तव में परेशानी क्यों हो रही है, क्या मैं अपनी तुलना किसी और से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर रही हूँ, उस व्यक्ति से मैं क्या सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, और अगले 7 दिनों में मैं अपने लिए कौन सा छोटा कदम उठाऊंगी। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब शायद आपकी सोच की दिशा बदल दें।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए युवा साथियों कि आप पीछे नहीं हैं। जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब हमें लगता है कि बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं जागृति जी, लेकिन कई बार हम अपनी प्रगति देखना ही भूल जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: कल की तुलना में आज अगर आपने कुछ नया सीखा है साथियों, अगर आपने कोई गलती सुधारी है, अगर आपने डर के बावजूद कोशिश की है और अगर आपने हार के बाद भी शुरुआत की है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। सफलता केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है, सफलता अपने पुराने रूप से बेहतर बनने का नाम भी है।
0: जी हाँ कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, अगली बार जब किसी की सफलता आपको चुभे तो तुरंत उस व्यक्ति से तुलना मत करना, ठहरना, सोचना और खुद से पूछना कि उसकी सफलता मुझे क्यों परेशान कर रही है और मैं अपने जीवन में क्या बदल सकता हूँ या सकती हूँ।
1: बिल्कुल,
0: हो सकता है श्रोता साथियों उस एक सवाल से हमें अपने किसी दबे हुए सपने का पता चल जाए, हो सकता है कि हमें अपनी कमी दिखाई दे, हो सकता है कि हमें अपने लक्ष्य की दिशा मिले। दूसरों की सफलता को देखकर जलने के बजाय उससे जरूर सीखना, दूसरों की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को छोटा भी मत समझना, और सबसे जरूरी बात है किसी और की रोशनी हमारे हिस्से का उजाला कम नहीं कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: हमारी सफलता का समय भी आएगा लेकिन उसके लिए आज से हमें अपनी यात्रा को ईमानदारी से आगे बढ़ाना होगा।
1: जी हाँ,
0: याद रखिए दूसरों से आगे निकलना सफलता नहीं, हर दिन खुद से बेहतर बनना ही असली सफलता है।
1: जी हाँ,
0: तो साथियों ये थी हमारी आज की बातें कि किस तरह से हमें किसी की सफलता चुभती है तो ठहर कर सोचना है।
1: बिल्कुल जागृति जी, और ये बातें हमारी युवा साथियों से आज कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी रही। उम्मीद करते हैं हमारे युवा साथियों को ये बातें जरूर पसंद आई होंगी।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बातचीत बहुत अच्छे विषय पर रहने वाली है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, एक पौधे को फूल बनने में समय लगता है और एक बच्चे को समझदार इंसान बनने में समय लगता है। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम चाहते हैं कि हर चीज तुरंत मिल जाए।
0: बिल्कुल।
1: सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चे को इंतजार करना भी सिखा रहे हैं? आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं हमारे बच्चों के जीवन से जुड़ी एक ऐसी आदत की जो छोटी लगती है लेकिन उनके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम बात करेंगे धैर्य और प्रतीक्षा करने की आदत को लेकर।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी होगी। लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी जानते हैं कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले एक प्यारे से गीत के साथ हम करें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि साथियों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है बातचीत का। हम बात कर रहे हैं बच्चों में धैर्य और प्रतीक्षा की आदत क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, क्या आपने कभी देखा है कि बच्चा अपनी मनपसंद चीज तुरंत चाहता है? उसे खिलौना चाहिए तो अभी चाहिए, मोबाइल चाहिए तो अभी चाहिए, खाने की कोई पसंदीदा चीज चाहिए तो इंतजार करना मुश्किल लगता है। अगर उसकी इच्छा तुरंत पूरी न हो अंजलि जी, तो कई बार तो बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाता है,
1: बिल्कुल
0: रोने लगता है या गुस्सा करने लगता है। लेकिन साथियों, जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कभी कभी किसी अवसर के लिए इंतजार करना पड़ता है, कभी मेहनत का परिणाम आने में समय लगता है, तो कभी अपनी बारी आने तक हमें धैर्य रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए धैर्य और प्रतीक्षा करना बच्चों के लिए केवल एक व्यवहार नहीं बल्कि जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण कला है अंजलि जी।
1: बिल्कुल कशिश, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में मोबाइल की एक क्लिक पर चीजें सामने आ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: वीडियो तुरंत चल जाता है, ऑनलाइन सामान घर तक पहुंच जाता है और बच्चे को मनोरंजन के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ता। ऐसे वातावरण में बच्चे के भीतर तुरंत परिणाम पाने की आदत विकसित हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए परिवार और विद्यालय की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह बच्चों को धीरे धीरे प्रतीक्षा, धैर्य और सही समय का महत्व समझाए। जी हाँ श्रोता साथियों, धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को हर इच्छा दबानी पड़े या हमेशा चुप रहना पड़े। धैर्य का मतलब है किसी परिस्थिति में जल्दबाजी किए बिना शांत रहना, अपनी बारी का इंतजार करना और कठिनाई आने पर तुरंत हार न मानना।
0: बिल्कुल,
1: मान लीजिए कशिश कि बच्चा कोई चित्र बना रहा है, चित्र पहली कोशिश में सुंदर नहीं बनता। यदि वह तुरंत कागज फाड़ कर फेंक देता है और उसे छोड़ देता है तो वह सीखने का अवसर खो देता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यदि वह दोबारा प्रयास करता है, गलती सुधारता है और धीरे धीरे बेहतर चित्र बनाता है तो वह धैर्य का अभ्यास कर रहा है। इसी तरह पौधा लगाने के बाद अगले दिन फल नहीं मिलता, बीज को मिट्टी, पानी, धूप और समय चाहिए होता है। बच्चों को यह उदाहरण समझाया जा सकता है कि अच्छे परिणाम भी समय और मेहनत से तैयार होते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं साथियों कि धैर्य जो है वो बच्चों को कठिन परिस्थितियों में संभलना सिखाता है। पढ़ाई में कोई विषय अगर कठिन हो, खेल में अगर हार हो जाए, दोस्त से मनमुटाव हो जाए या किसी प्रतियोगिता में सफलता न मिले, ऐसे में हर परिस्थिति में धैर्य बच्चों को आगे बढ़ने की शक्ति देता है।
1: जी जी
0: अंजलि जी, जिस बच्चे को छोटी सी असफलता के बाद भी प्रयास जारी रखना आता है, उसके भीतर आत्मविश्वास मजबूत रहता है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि वह यह समझता है कि एक बार असफल होना अंतिम परिणाम नहीं होता। धैर्य जो है साथियों वो बच्चों की एकाग्रता में मदद करता है। किताबें पढ़ना, कोई कला सीखना, पौधे लगाना, संगीत का अभ्यास करना या किसी खेल में कौशल विकसित करना हो, इन सभी कामों के लिए समय और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है दोस्तों।
1: जी हाँ बिल्कुल कशिश, जब बच्चा अपनी बारी का इंतजार करता है तो वह दूसरों के अधिकार का सम्मान भी करना सीखता है। उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, आपको बताएं, यदि कई बच्चे एक ही झूले पर खेलना चाहते हैं तो हर बच्चे को अपनी बारी आने का इंतजार करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: इससे बच्चे में अनुशासन और सामाजिक व्यवहार विकसित होता है। इसी तरह

0: परिवार में यदि सभी लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं और बच्चों को अपनी पसंद की चीज थोड़ी देर बाद मिलती है तो वो प्रतीक्षा करना सीखता है। प्रतीक्षा करने का अर्थ केवल समय काटना नहीं, यह बच्चे को अपने मन और भावना को नियंत्रित करना सिखाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों को धैर्य सिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कैसे सिखा सकते हैं? तो सबसे पहले माता पिता को स्वयं उदाहरण बनना होगा। बच्चे केवल हमारी बातें नहीं सुनते, वे हमारे व्यवहार को देखकर भी सीखते हैं। यदि बच्चा किसी चीज के लिए तुरंत जिद करे तो हर बार उसकी इच्छा तुरंत पूरी करने के बजाय प्यार से समझाए, यह चीज अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मिलेगी। शुरुआत में बच्चा विरोध कर सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास से वह प्रतीक्षा करना सीखता है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चे को छोटे छोटे इंतजार से शुरुआत कराएं, जैसे भोजन परोसने तक इंतजार करना, खेल में अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, किसी पसंदीदा गतिविधि के लिए निर्धारित समय का इंतजार करना।
1: जी
0: कुछ
1: हाँ।
0: ऐसी महत्वपूर्ण आदतें हैं जो बच्चे माता पिता से सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम सच्चा बचपन के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम जान रहे हैं कि बच्चों को धैर्य और इंतजार करना हम कैसे सिखाएं, जिसमें हमने ढेर सारी बातों को जाना। अब यही बात आती है कि बच्चों की हर इच्छा तुरंत पूरी करना क्यों ठीक नहीं। श्रोता साथियों, बच्चों से प्यार करना जरूरी है, लेकिन प्यार का अर्थ हर इच्छा पूरी कर देना नहीं है। यदि बच्चे को हर चीज तुरंत मिलती रहे तो इसके भीतर इंतजार करने की क्षमता कम हो सकती है। कभी कभी बच्चे को अभी नहीं सुनना भी सीखना चाहिए। इससे वह निराशा को संभालना सीखता है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण विकसित करता है।
1: बिल्कुल,
0: इसका अर्थ यह नहीं कि बच्चे को जानबूझकर परेशान किया जाए, बल्कि उसकी उम्र और परिस्थिति के अनुसार उचित सीमाएं तय की जाए और उसे प्यार से समझाया जाए। कशिश, आज बच्चों के धैर्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल स्क्रीन टाइम भी है।
1: जी जी।
0: मोबाइल पर बच्चे लगातार छोटे छोटे वीडियो देखते हैं। एक वीडियो खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। इससे लगातार नया मनोरंजन आने की आदत बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बच्चों के दिन में ऐसी गतिविधियां भी होनी चाहिए जिसके परिणाम तुरंत न मिले, जैसे किताब पढ़ना, चित्र बनाना, पौधे लगाना, मिट्टी से चीज बनाना, पहेली हल करना और कोई खेल सीखना।
1: जी हाँ।
0: इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चा समझता है कि हर काम का आनंद तुरंत परिणाम मिलने में नहीं बल्कि प्रक्रिया में भी होता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। साथी, अगर बात करें विद्यालय में धैर्य की सीख की, तो दोस्तों विद्यालय बच्चों को धैर्य सिखाने का एक बहुत अच्छा स्थान हो सकता है। शिक्षक बच्चों को समूह गतिविधियों, खेलों और रचनात्मक कार्यों में शामिल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: किसी बच्चे की बारी आने तक इंतजार करना, दूसरे बच्चे की बात पूरी होने देना, टीम के साथ मिलकर काम करना और गलती होने पर दोबारा प्रयास करना, ये जो सारी चीजें हैं वो रोजमर्रा के छोटे अभ्यास बच्चों में धैर्य विकसित कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: साथ ही अगर बात करें गाँव और समुदाय की, तो हमारे ग्रामीण जीवन में अंजलि जी धैर्य की कई प्राकृतिक सीख मौजूद है। किसान जो है वो बीज बोने के बाद फसल के लिए समय देता है, पेड़ लगाने के बाद उसके बड़ा होने का इंतजार किया जाता है, वर्षा का इंतजार होता है और मौसम के अनुसार खेती की जाती है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, इन वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है कि प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज का अपना एक समय होता है। साथ ही बच्चों को खेत, बगीचे या प्रकृति से जुड़ना इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि वहां उन्हें परिणाम के लिए इंतजार करना प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है।
0: जी जी। इसी के साथ श्रोता साथियों, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके सामने बड़ी चुनौतियां आती हैं।
1: हाँ।
0: पढ़ाई, परीक्षा, प्रतियोगिता, रोजगार, रिश्ते और जीवन के अनेक फैसले में उन्हें धैर्य की जरूरत होती है। हर जगह तुरंत सफलता नहीं मिलती, कई बार मेहनत के बाद भी परिणाम देर से आता है। ऐसे समय में वही बच्चा आगे बढ़ पाता है जो निराश होकर रुकने के बजाय अपनी कोशिश जारी रखता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए धैर्य सिखाना बच्चे को केवल आज के लिए तैयार करना नहीं बल्कि उसे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाना है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को धैर्य सिखाने के लिए बड़े नियम बनाने की जरूरत नहीं है, रोजमर्रा की छोटी स्थितियां पर्याप्त है। उन्हें अपनी बारी का इंतजार करने दें, किसी काम को पूरा करने का समय दें, हर गलती पर तुरंत समाधान न बताकर उन्हें सोचने का अवसर दें, खेल में हारने पर उन्हें दोबारा प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, पौधा लगाने जैसी गतिविधियों से उन्हें परिणाम के लिए इंतजार करना सिखाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे के धैर्य रखने पर उसकी प्रशंसा करें। जब बच्चा बिना रोए या बिना गुस्सा किए अपनी बारी का इंतजार करता है तो उसे बताएं कि उसने बहुत अच्छी तरह धैर्य रखा, इससे वह इस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित होगा।
1: बिल्कुल
0: साथियों, बचपन में सीखी गई धैर्य की आदतें जो हैं वो आगे चलकर बच्चे के व्यक्तित्व की ताकत बन सकती है। क्योंकि कशिश, जो बच्चा इंतजार करना सीखता है वह दूसरों का सम्मान करना, अपनी भावनाओं को समझना, कठिनाइयों में टिके रहना और मेहनत का परिणाम आने तक प्रयास करते रहना भी सीखता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बच्चों को हर चीज तुरंत देने के बजाय कभी कभी उन्हें प्रतीक्षा का अनुभव भी दें, उन्हें समझाएं कि कुछ चीजों का आनंद इसलिए खास होता है क्योंकि उन्हें पाने के लिए हमने समय दिया, मेहनत की और इंतजार किया। याद रखिए, बच्चे के हाथ में हर चीज तुरंत देना आसान है, लेकिन उसे सही समय का इंतजार कराना सिखाना उसके भविष्य के लिए कहीं अधिक मूल्यवान है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हमारे साथियों को हम सुनवाएं।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: बिल्कुल, इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को। नमस्कार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र किसान भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलि
1: ने आपनी बोन जागृति नु
2: राम राम।
0: किसान भाई बोन आप हम रेडियो हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत करा हा अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: होवे किसान भाई बोन कार्यक्रम खेतीवाड़ी लेने हाजिर थी गया एक नवा विषय ने हाते। अंजलि बोन आज आपणे जे वाते करा रहा ए विषय है छोटा अनाज ने बारे में। जानंगा क्या छोटा अनाज हूँ कहवाय न आना थकी आपणे किसान भाई बहनों ने हूँ फायदो थी सके।
0: होवे तो जागृति बोन अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में आपणे किसान भाई बोन थकी घणा कानी वाते करंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपणे किसान भाई बहनों ने आपणे हामरा विदा गीत मोरे करा आपणी वाते।
1: होवे तो किसान भाई बोन आप हांभळतो रहो आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: જાગૃતિપુન ગીત તો એસો પૂરું ને ગીતની વાત એક વખત ફરી આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોનું સ્વાગત કરા હું કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે આપે ગીત કે પહેલે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાત કરવા વાળા હું કે આપણે છોટા અનાજનું શું મહત્વ હે ને આ છોટા અનાજની ખેતી કરીને આપણે જે કિસાન ભાઈ બહેનો હે એ હરતે લાભ કમાવી શકે
1: હોવે તો અંજલિ બોન આ સબની જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે સ્ટુડિયો મેં પધાર તકા હે શ્રીમાન પ્રમોદ રોકડિયાજી સર એ આપણને બતાડેગા કે આ છોટા અનાજ શું કહેવાય ને આના થકી આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોને શું ફાયદો થઈ શકે
0: હોવે તો સબ થકી પહેલે આપણે હામરણાની વાત અને મોરકર આપણી વાત
1: હોવે
0: સર નમસ્કાર
2: નમસ્કાર
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ હમ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
2: કિસાન ભાઈઓ નમસ્કાર
0: જૈસા કે સર હમ સભી જાણતે હૈ કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો છોટે અનાજ કી ભી ખેતી કરતે હૈ તો બહોત સે એસે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ ઉનકા જો રુખ હૈ વો ઇન છોટે અનાજો સે થોડા અલગ હટ ગયા હૈ તો આજ હમ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો યહી બતાના ચાહેંગી કે જો છોટે અનાજ હૈ ઉનકા ક્યા મહત્વ હૈ ઓર કિસ તરીકે સે યે જો છોટે અનાજ હૈ વો હમારે લિયે બહોત ફાયદેમંદ હોતે હૈ
2: किसान भाइयों जैसा कि अपन बात करें आज छोटे अनाज के बारे में छोटे अनाज या मिलेट जो कहते हैं मिलेट जैसे मिलेट तो होता है जैसे बाजरा है ज्वार है ये तो मोटा अनाज कहलाता है
0: जी
2: बड़े मात्रा में बड़ी संख्या में इसको लगाया जाता है लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है जिसको हम छोटा अनाज कहते हैं
0: जी
2: छोटा अनाज कहते हैं या माइनर मिलेट भी कहते हैं लेकिन जो बहुत ही कम जगह पे और कम समय में पकने वाला होता है और बहुत ही छोटी धान्य फसलें हैं जिसमें कि दाना बहुत छोटा सा होता है और उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है उसकी गुणवत्ता युक्त होता है। अब जैसे कि छोटे अनाज की कौन कौन सी फसलें हैं तो अपन जैसे बात करेंगे कि कांगनी है सावा है फिर आपका कोदो है
0: जी बिल्कुल
2: रागी है ये कुटकी है ये इस तरह से छोटे अनाज की फसलें जो हमारे किसान भाई हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है इसके किसान भाई इसको अच्छी तरह से पहचानते हैं
0: जी बिल्कुल
2: लेकिन जैसा कि आप बात कर रहे हो कि अभी कुछ समय में कुछ दूसरी फसलों का प्रचलन बढ़ा है
0: जी बिल्कुल
2: तो ये हमारी जो कीमती फसलें हैं जिसकी कीमती क्या मतलब है कि उसमें गुण काफी है
0: जी बिल्कुल
2: हाँ लेकिन उसकी उपज कम है तो हमारे कुछ किसानों का रुख उसकी तरफ से हट गया और लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि वो जो छोटे अनाज की हैं फसलें वो राजस्थान में अगर हम देखें तो हमारे ही क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है
0: जी बिल्कुल
2: और लगाना भी उसको आसान है उसको जमीन भी ऐसी चाहिए कि जिसमें बहुत ज्यादा दूसरी फसलों की खेती नहीं हो उसमें हो जाती है कम पानी की आवश्यकता होती है कम समय में पक जाती है खाद भी बहुत कम चाहिए कीड़े भी बहुत लगभग नहीं लगते बीमारी भी लगभग नहीं लगते और आसानी से वो हो जाती
0: है जी बिल्कुल सर जैसा कि आपने बताया कि ये जो हमारे छोटे अनाज हैं उनको हम आसानी से उगा भी सकते हैं लेकिन हम देखते हैं कि अभी के समय में वापस से इन सारी चीजों की मांग बढ़ गई है और जैसा कि आपने कहा कि हमारे राजस्थान में ये जो छोटे अनाज हैं उनका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो उत्पादन है कुछ कम मात्रा में होता है शायद इसी वजह से इन छोटे अनाजों के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं
2: बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि और आसमान छूने के बाद जो है ना क्योंकि उसमें गुण है
0: जी बिल्कुल
2: अभी जैसे अपन बात करें कोरोना आया तो कोरोना में हमको कैल्शियम की कमी महसूस हुई जिंक की कमी महसूस हुई जो भी डॉक्टर है वो जिंक की दवा देने लग गए और लेकिन क्योंकि हमने ऐसी फसलों को छोड़ दिया ऐसी फसलों का खाना छोड़ दिया अब ये फसलें जो हैं वो ऐसी थी कि जिसमें रेशा भी अच्छा था इसका
0: जी जी
2: इसमें जिंक की मात्रा कैल्शियम की मात्रा लोह तत्व की मात्रा इनमें काफी हमारी जो दूसरी फसलें हैं जैसे गेहूं है चावल है उनके मुकाबले में काफी अधिक है
0: जी बिल्कुल
2: इसका रेशा भी होता है कि जो सुपाच्य होता है और ऐसा थोड़ा उसमें मोटापन होता है कि उससे क्या होता है कि जो हमारा शरीर में जो शुगर है जिसके कहते हैं मधुमेह डायबिटीज जो कहते हैं अपन तो वो उसको भी रोकने की क्षमता होती है कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां उसको भी रोकने की क्षमता होती है यानी वो सुपाच्य उसका रेशा होता है और रेशा जो हमारी जो शरीर के जो विषैले तत्व हैं उनको वो एब्जॉर्ब करके शरीर से बाहर निकाल सकता है तो इसलिए वो फसलें हैं तो उसमें काफी गुण है लेकिन अब क्योंकि वो छोटे हैं और ऐसी जगहों पर होती थी तो उसको हमारे किसानों ने धीरे धीरे धीरे धीरे ध्यान नहीं आज बहुत ही छोटे कुछ संख्या में करते हैं लेकिन अगर अपन राजस्थान में भी देखें तो राजस्थान में 8 ही जिले ऐसे हैं जिनमें ये इस तरह की फसलें हो रही है इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर पाली सिरोही या अपन देखें जितने भी हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें ये फसलें हो रही है
0: जी बिल्कुल
2: और हम उसमें भी अगर हम देखें तो हमारे दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला इसमें लगभग राजस्थान का 40% तक हमारा ये फसल का हो रहा है लगभग अगर अपन अनुमान भी लें तो लगभग 8000 हेक्टेयर के अंदर पूरे राजस्थान में हो रही है इसमें लगभग 3 से 4 हजार हेक्टेयर हमारे इस बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में और इसकी उपज भी हमारे यहाँ की अच्छी है और सबसे जैसे अपन बताया कि इसमें ये भी फायदा हो जाता है कि उन जगहों पर भी इसको लगाया जा सकता है जहाँ पर बहुत अच्छे खेत नहीं हो, बहुत अच्छी मिट्टी नहीं है हमारे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो जमीन है, हमारे खेत है वो उबड़ खाबड़ है, तलाटी वाले हैं, पहाड़ के ऊपर तक पे जाते हैं
0: जी बिल्कुल।
2: तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर दूसरी सोयाबीन, मक्का और या चावल या ऐसी होने की संभावनाएं कम होती है या नगण्य होती है, तो उन खेतों में हम इस तरह की फसल को आसानी से कर सकते हैं
0: जी बिल्कुल। हम कह सकते हैं कि जो खेत हमारे ऐसे हैं जहाँ पर हम दूसरी फसलें नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम छोटे अनाजों की खेती कर सकते हैं
2: और करके हम ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। और अभी भाव का भी देखो तो आप इसमें एक एक किलो में जब हम उतारते हैं 30 से 40 रुपए किलो आसानी से इसका भाव मिल जाता है। एक हेक्टेयर की बात करें, एक हेक्टेयर मतलब 6 बीघा, तो उसमें हमारा 15 से 20 क्विंटल पैदा हो जाता है
0: जी बिल्कुल।
2: तो अच्छा तो पैदा होता है और समय कम लगता है, जैसा अभी अपन बात की कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई बीमारी नहीं लगता
0: जी बिल्कुल।
2: खाद भी हमारा जो जैविक खाद है वो दें तो हमको उसमें ज्यादा फायदा होता है और उसका बाजार का और उसके जो गुण है उसकी वजह से उसमें उसकी मांग भी काफी है
0: जी बिल्कुल। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि छोटे अनाज की खेती अगर हमारे किसान भाई बहन करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी
2: बिल्कुल। अभी बात करें, अभी फसलें तो 6 हैं, अभी 6 फसलों में कौन कौन सी हम लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो अभी बांसवाड़ा में देखते हैं अपन। एक तो कांगनी होती है, कांगनी अगर जैसे किसान भाई हैं वो देखते होंगे, कांगनी ऐसी फसल है जिसमें उसकी जो बालियां हैं वो लोमड़ी की जैसे पूंछ होती है उस तरह से लगती है
0: जी बिल्कुल।
2: एक होती है फिंगर मिलेट जिसको कि हम कहते हैं कि रागी है, रागी जिसमें जो जैसे उंगली, अगर अंग्रेजी का शब्द है फिंगर मिलेट
0: जी बिल्कुल,
2: है ना, तो मतलब वो उंगलियों के आकार की उंगलियों जैसी होती है, 4-4, 5-5 उंगलियों का जैसा एक गुच्छा होता है जिसके अंदर वो दाना लगता है, इसलिए उसको फिंगर मिलेट कहते हैं और रागी कहते हैं उसको। रागी काफी मतलब उसके गुण है वो रागी के बहुत अच्छे हैं
0: जी बिल्कुल।
2: अभी हमारे यहाँ भी कई प्रयोग हुए थे, हमारे जो बांसवाड़ा जिले के अंदर प्रयोग हुए क्योंकि हमारा जो पौष्टिकता की कमी थी, बच्चों को उसको रागी का जो आटा दिया गया, उसके लड्डू बना के उसके गुण को दिया गया, तो बच्चों के अंदर पोषण का काफी महत्व आया
0: जी बिल्कुल। हम कह सकते हैं कि उनका जो कुपोषण है उससे वो दूर हो पाए,
2: उससे दूर हो पाते हैं, तो इसलिए ये फसल है जैसे रागी है, तो रागी का तो कुपोषण के लिए बहुत बड़ा महत्व है, तो वो उस तरह से काम में लेती है। एक ऐसी तरह से कोदो है, कोदरा जिसको कहते हैं, वो कोदो है, वो उसका भी थोड़ा सा ऐसा दाना होता है लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड होता है,
0: सख्त बिल्कुल सख्त होता है,
2: तो उसको पचाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जो हमारे कामगार भाई लोग हैं जिनकी मेहनत किसान है, खेत में मेहनत ज्यादा करते हैं, तो उनको पचाने के लिए बहुत आसानी से ये चीजें पच जाती है
0: जी बिल्कुल।
2: और लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसके गुण बहुत हैं। गुण मतलब जो हमारी जो प्रोटीन के हैं, कैल्शियम, जिंक और आयरन का, जो अभी हम गुण की बात कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के जो आवश्यक तत्व हैं उनको आसानी से मिल जाते हैं
0: जी बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन है अगर वो इन छोटे अनाजों की खेती करते हैं तो उन्हें दो दो लाभ है, साथ ही उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और इसी के साथ अगर वो उसका सेवन करेंगे तो उससे उनके जो पोषक तत्व हैं शरीर में वो भी पूरे हो
2: बिल्कुल
0: पाएंगे।
2: वो पूरे होंगे और फसल भी जो करने में बड़े आसान है।
0: हाँ, जी
2: भाई
0: बिल्कुल।
2: अभी आप अगर एक हेक्टेयर के लिए बात कर रहे हैं, जैसे अपन ने बताया कि लगभग 15 से 20 और 25 क्विंटल तक उपज आती है
0: जी जी।
2: लेकिन बीज की मात्रा भी देखें तो 8 से 10 किलो ही बीज चाहिए
0: जी बिल्कुल। इसमें कम बीज चाहिए और अच्छा फायदा हो जाता है
2: और इसका चारा भी होता है, चारा जो होता है हरा चारा लो, हरा चारा भी ऐसा होता है कि जितना भी उपज आती है उसके लगभग 3 गुना चारा होता है हरा
0: जी जी।
2: तो वो चारा जो है वो हमारे जितने भी दुधारू जानवर हैं, पशु हैं जितने भी, तो उनके काम आता है, उनको दूध बढ़ाने की उनकी क्षमता है।

0: कर सकते हैं
1: जी, जी.
0: हमारे पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकते हैं और साथ में अगर जो उसका हम मूल्य संवर्धन करें, मूल्य संवर्धन कैसे, जैसे भी अपन बताएं कि अभी बच्चों के लिए हमने पौष्टिकता के लिए एक प्रोग्राम चलाया था बांसवाड़ा जिले के अंदर और उसमें बच्चों को उसके लड्डू बना के दिए गए थे, रागी के लड्डू है, इसका खिचड़ा है, इसकी खीर है, इसका कई तरह से इसके उबाल के भी बनते हैं और कई हलवे टाइप से भी बनते हैं इसके और रोटी बनती है इसकी
1: जी बिल्कुल, रोटी बनी रोटी बनती है जी, जी।
0: तो ये जितने भी चीजें हैं जो हमारे मतलब आहार के लिए अगर उसके गुण भी बनते हैं। अब ये मूल्य संवर्धन की बात करें तो अगर कोई इसको व्यवसाय के रूप में देखना चाहे तो इसके बिस्किट बनाकर, इसके बेकरी का प्रोडक्ट बनाकर वो भी व्यवसाय कर सकते हैं। मतलब जो 30-40 रुपए किलो के अंदर जो अपन उसको एक रॉ मटेरियल की तरह बेचते हैं, अगर हम उसको मूल्य संवर्धन करेंगे तो वो 300-400 रुपए किलो तक भी बिक सकता है
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये हमारी जो हमारे सुविधापूर्ण जो हमारे क्षेत्र के अंदर ये फसलें हैं उसका इतनी वैल्यू है
1: जी बिल्कुल।
0: और हमारे जो जमीन है जिसमें ज्यादा दूसरी फसलें नहीं होती या जो हमारी अंतर फसल है उसके रूप में हम इसकी खेती कर सकते हैं तो हमारा खुद के जीवन के लिए भी, पशुओं के जीवन के लिए भी और हमारी आर्थिक उन्नति के लिए भी ये फसलें ऐसी है जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी है
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दी कि छोटे अनाज किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और किस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन है वो इसकी खेती कर सकते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सर अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि ये छोटे अनाज की फसलें हम हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ये राजस्थान में हमारे क्षेत्र में हो सकती है और हम ही इसको भूल रहे हैं, तो इसके बीज के लेकर कृषि विभाग से, कृषि अनुसंधान केंद्र से या और संस्थाओं से इसके बीज की व्यवस्था करके हमें जो हमारे खेत है उसमें कम से कम अंतर फसल के रूप में तो लें
1: जी जी,
0: और नहीं अगर जमीन ऐसी है तो उसमें लें। हम अगर नहीं भी बेचे तो हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए, हमारे दुधारू पशुओं के लिए काम के लिए तो बहुत ही अच्छी है
1: जी।
0: तो क्यों ना हम अपनी इस जलवायु का उपयोग करते हुए और हमारी खेतों का उपयोग करते हुए इन छोटी फसल जो लगभग 2-4 महीने के अंदर हो जाती है और जिसको कोई बहुत ज्यादा इसका लागत में बहुत ज्यादा इसमें है नहीं तो उसको करके हम क्यों नहीं लाभ लें
1: जी बिल्कुल।
0: हमारे क्योंकि जो देखा है कि हमारे बच्चों में कुपोषण की व्यवस्था हो रही है, हमारी जो माताएं बहनें हैं उसमें भी कमी आ रही है, जो हमारी माताएं या बहनें ऐसी हैं जिनके गर्भवती महिला है तो उसमें भी पोषक चीजों की आवश्यकता
1: होती है।
0: तो ऐसी फसलों को लेकर और कम से कम हमारे घर की पूर्ति करके, हमारे अन्य जो हमारे समुदाय के लिए पूर्ति करके और हमारे अगर आर्थिक वृद्धि करने के लिए भी हम गरीब फसलों को लगाएं तो हम काफी लाभ ले सकते हैं
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने आपका इतना अमूल्य कीमती समय हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: अंजलि बोल जिम के आज प्रमोद सर आने आपने घना की बातें बताड़ी की आ छोटा अनाज हूँ कहवाये ने आना था की आपने किसान भाई बहनों ने हूँ फायदो थी सके। हम आपने दीखी रहा की टेम थी गये है सूटा पड़वा, तो सूटा तो पड़ंगा पर साथ हमरे लेकर कितने मोरे पड़े सूटा
1: हो।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपना ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: सेहत नु राज हूँ है बोन,
1: असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह।
0: होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
1: होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, देशभक्ति का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब हम अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाते हैं। अंजलि, देशभक्ति केवल तिरंगा लहराने, देशभक्ति के गीत गाने या विशेष अवसरों पर देश के प्रति प्रेम व्यक्त करने का नाम नहीं है। एक विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता है, किसान मेहनत से अन्न उगाता है, शिक्षक पूरी निष्ठा से शिक्षा देता है, कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करता है और नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझता है, यही सच्ची देशभक्ति है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, क्योंकि देश केवल उसकी सीमाओं, सड़कों और इमारतों से नहीं बनता, देश उसके ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों से बनता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं देशभक्ति का सबसे सुंदर रूप ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ है।
1: बिल्कुल श्रोता साथियों, देशभक्ति का नाम सुनते ही हमारे मन में तिरंगे की शान, स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग, सीमा पर खड़े वीर जवान और राष्ट्रगान की गूंज की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या देशभक्ति केवल देश के लिए बड़े बड़े कार्य करने का नाम है? नहीं, देशभक्ति का सबसे सुंदर और सच्चा रूप हमारे रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देता है। जब जागृति जी कोई व्यक्ति अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है, अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाता है, नियमों का सम्मान करता है और समाज के हित को अपने स्वार्थ से ऊपर रखता है, तब वह वास्तव में देश की सेवा कर रहा होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि देश केवल सीमाओं से नहीं बनता, देश उसके नागरिक के चरित्र, कर्म और जिम्मेदारी से बनता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को सच्ची देशभक्ति का आधार कहा जा सकता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि ईमानदारी मनुष्य के चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति है। ईमानदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता।
1: बिल्कुल,
0: वो अपने लाभ के लिए किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करता और अपने कार्य में किसी प्रकार की बेईमानी से बचता है। अंजलि, हम अक्सर सोचते हैं कि देशभक्ति का अर्थ देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन यदि हम अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी रखें तो ये भी राष्ट्र सेवा का एक ही रूप है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि विद्यार्थी परीक्षा में नकल न करे, कर्मचारी अपने काम के प्रति ईमानदार रहे, व्यापारी सही वस्तु और सही कीमत दे, नागरिक अपने दायित्व को समझे, ये छोटे छोटे जो उदाहरण है वो देशभक्ति को मजबूत करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: एक ईमानदार नागरिक समाज में विश्वास पैदा करता है और विश्वास किसी भी मजबूत राष्ट्र की नींव होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात कर रही कर्तव्य निष्ठा की, तो श्रोता साथियों, कर्तव्य निष्ठा का अर्थ अपने दायित्व को पूरी जिम्मेदारी, लगन और निष्ठा से निभाना है।
0: बिल्कुल,
1: केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या है, उसे सही ढंग से पूरा करना भी जरूरी है। एक शिक्षक का कर्तव्य केवल विद्यालय आना नहीं बल्कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना है। डॉक्टर का कर्तव्य केवल इलाज कराना नहीं बल्कि मरीज के प्रति संवेदनशील रहना है। किसान का कर्तव्य मेहनत से खेती करना है। विद्यार्थी का कर्तव्य मन लगाकर पढ़ना और अपने चरित्र का निर्माण करना है। इसी तरह प्रत्येक नागरिक का अपना एक कर्तव्य है। जब देश के करोड़ों नागरिक अपने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, तब राष्ट्र की प्रगति अपने आप तेज हो जाती है।
0: बिल्कुल, जैसे कि हम राष्ट्रीय पर्वों पर देशभक्ति के गीत गाते हैं, तिरंगा फहराते हैं और देश के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, यही हमारी राष्ट्रीय भावना को मजबूत करता है। लेकिन देशभक्ति का वास्तविक परीक्षण हमारे व्यवहार में होता है श्रोता साथियों।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम तिरंगे की बात करें तो हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, तो हमें अपने देश की सार्वजनिक संपत्ति का भी सम्मान करना होगा। हम देश की स्वच्छता की बात करते हैं तो हमें सड़क पर कचरा नहीं फेंकना होगा। यदि हम देश की प्रगति चाहते हैं तो हमें अपने काम में लापरवाही भी नहीं करनी होगी।
1: जी जी,
0: देशभक्ति की असली पहचान ये है कि कोई हमें देख रहा हो या नहीं, हम अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, सड़कें, विद्यालय, अस्पताल, पार्क, पुस्तकालय, सरकारी भवन और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की संपत्ति है। इन्हें नुकसान पहुंचाना वास्तव में देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचाना है। एक जिम्मेदार नागरिक सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति की तरह सुरक्षित रखता है। वह दीवारों पर अनावश्यक रूप से नहीं लिखता, सार्वजनिक स्थानों को गंदा नहीं करता और किसी सरकारी सुविधा का दुरुपयोग नहीं करता। जब हम सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा करते हैं तो हम देश के विकास में अपना योगदान देते हैं।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, देश को मजबूत बनाने में कानून और नियमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यातायात नियमों का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। हम देखते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि किसी छोटे नियम को तोड़ने से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जब करोड़ों लोग इसी सोच के साथ नियम तोड़ने लगे तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है जागृति जी। इसलिए सच्चा देशभक्त वही है जो केवल सुविधा के समय नहीं बल्कि हर परिस्थिति में नियमों और जिम्मेदारियों का सम्मान करें।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, देशभक्ति का सबसे सुंदर रूप ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा है। तो बातें ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि नियमों का पालन करना, अनुशासन की पहचान करना भी देशभक्ति का ही एक स्वरूप है। यहीं इसमें जागृति जी युवाओं की भूमिका की बात करें तो श्रोता साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में होता है। जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा कहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: युवा यदि ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत और कर्तव्य निष्ठा को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो देश की दिशा बदल सकती है। जागृति जी, आज का युवा विद्यार्थी है तो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अच्छे चरित्र का निर्माण करे। वह अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के हित में कर सकता है। वह नई सोच और तकनीक और नवाचार के माध्यम से देश की समस्याओं का समाधान देख सकता है। युवाओं को यह समझना होगा कि देश की सेवा केवल किसी विशेष क्षेत्र में जाकर नहीं की जाती। जिस क्षेत्र में हम हैं, उसी क्षेत्र में ईमानदारी और श्रेष्ठ कार्य करना भी राष्ट्र सेवा है।
1: बिल्कुल, जैसे कि अंजलि, देश के विकास के लिए हमेशा बड़े बड़े कार्यों की आवश्यकता नहीं होती। छोटे छोटे अच्छे कार्य भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, व्यक्ति पानी बचाता है, दूसरा बिजली की बचत करता है, कोई पौधा लगाता है, कोई जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है, कोई अपने आसपास स्वच्छता रखता है और कोई अपने कार्यस्थल पर पूरी ईमानदारी से काम करता है।
0: जी जी।
1: इन सभी कार्यों का सामूहिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जब एक समाज अपने छोटे छोटे कर्तव्य को गंभीरता से निभाता है तो वही समाज एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण भी करता है। हम अक्सर समाज और देश में बदलाव की उम्मीद करते हैं अंजलि, लेकिन बदलाव की शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। श्रोताओं, हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, क्या मैं अपने समय का सही उपयोग करता हूँ, क्या मैं दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता हूँ या करती हूँ, क्या मैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करती हूँ, क्या मैं अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती हूँ। यदि हर व्यक्ति इन सवालों का जवाब ईमानदारी से तलाश, श्रोताओं, अपने व्यवहार में सुधार लाए तो देश में सकारात्मक परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सच्ची देशभक्ति का अर्थ केवल देश से प्रेम करना नहीं बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी है।
1: बिल्कुल,
0: देश से प्रेम तभी सार्थक है जब वह हमारे कर्मों में दिखाई दे। एक सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है, किसान खेत में मेहनत करके देश का पेट भरता है, शिक्षक ज्ञान की रोशनी फैलाता है, वैज्ञानिक नई खोज से देश को आगे बढ़ाता है।
1: जी हाँ।
0: डॉक्टर लोगों की सेवा करता है, श्रमिक अपने परिश्रम से विकास की नींव मजबूत करता है, विद्यार्थी शिक्षा और संस्कार प्राप्त करके भविष्य का निर्माण करता है। हर व्यक्ति का कार्य अलग है लेकिन उद्देश्य एक हो सकता है, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाकर देश को बेहतर बनाना।
1: बिल्कुल अंजलि, देशभक्ति किसी एक दिन की भावना नहीं बल्कि जीवन जीने की एक जिम्मेदार सोच है। तिरंगे को सलाम करना देशभक्ति है, लेकिन तिरंगे की गरिमा के अनुरूप अपने आचरण को रखना उससे भी बड़ी देशभक्ति है। राष्ट्रगान का सम्मान करना देशभक्ति है, लेकिन राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करना उससे भी आवश्यक है।
0: बिल्कुल,
1: हमें समझना होगा श्रोताओं कि देश का निर्माण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, देश का निर्माण हम सभी के ईमानदार कर्मों से होता है। इसीलिए आज हमें ये मन में सोच लेना है कि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे, नियमों का सम्मान करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और समाज के हित में अपना योगदान देंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि देशभक्ति केवल सीमा पर दिखाई देने वाला साहस नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देने वाली ईमानदारी भी है। जब हर नागरिक अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएगा तभी देश सच्चे अर्थों में मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगा। देशभक्ति शब्दों से नहीं, हमारे कर्मों से पहचानी जाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन देश को मजबूत बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपने हिस्से का छोटा काम ईमानदारी से करना होगा।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि देशभक्ति किसी एक दिन की भावना नहीं है, ये हमारे जीवन की रोजमर्रा की आदतों में दिखाई देने वाली सोच है। देश के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले सैनिकों का साहस हमारे लिए प्रेरणा है, लेकिन देश के भीतर हर नागरिक की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा भी राष्ट्र की ताकत है। एक ईमानदार किसान, मेहनती मजदूर, जिम्मेदार कर्मचारी, निष्ठावान शिक्षक, जागरूक महिला, अनुशासित युवा, पढ़ाई के प्रति समर्पित विद्यार्थी और अपने गांव को स्वच्छ रखने वाला नागरिक, हर कोई अपने तरीके से देश का निर्माण कर रहा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देश के लिए कोई और कुछ करे, हमें सोचना चाहिए कि देश के लिए मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी क्या निभा सकता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जब एक एक नागरिक अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है तब गांव मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है और राष्ट्र मजबूत होता है। इसलिए हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि ईमानदारी को अपनी आदत बनाएंगे, कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, प्रकृति और संसाधनों को बचाएंगे और अपने हर काम में देश हित को ध्यान में रखेंगे।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, अब समय का मान रखते हुए विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
0: नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, निपोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, स्वच्छ हाथ स्वस्थ परिवार, यही है खुशियों का आधार। साबुन पानी साथ रखेंगे, बीमारी को दूर भगाएंगे।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, इन्हीं बातों के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल।
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।
0: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर एक नए विषय के साथ में। आज हम कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो देखने में तो बहुत छोटी लगती है लेकिन हमारे पूरे परिवार और समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज हमारा कार्यक्रम का विषय है स्वच्छ हाथ स्वस्थ जीवन। मनीषा, हम दिन भर में न जाने कितनी चीजें छूते हैं, दरवाजे की कुंडी, मोबाइल, पैसे, खेत में इस्तेमाल होने वाले औजार, पशुओं से जुड़ी वस्तुएं, सार्वजनिक स्थानों की चीजें और मिट्टी। इन चीजों को छूने के बाद हमारे हाथों पर कई तरह के सूक्ष्म जीव आ सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, भोजन बनाते हैं और अपने चेहरे, आंख, नाक और मुंह को छूते हैं तो यही गंदगी हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकती है। इसलिए हाथ धोना केवल सफाई की आदत नहीं बल्कि बीमारियों से बचाव की पहली सीढ़ी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छ हाथ स्वस्थ जीवन और हाथों की स्वच्छता के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि स्वच्छ हाथ स्वस्थ जीवन केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि स्वस्थ रहने का एक महत्वपूर्ण संदेश भी है।
1: बिल्कुल,
0: हमारा दैनिक जीवन श्रोता साथियों अनेक प्रकार के कामों से जुड़ा हुआ है। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, घर का काम करते हैं, स्कूल या कार्यालय जाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं साथियों, और अलग अलग वस्तुओं को छूते हैं। इन सभी गतिविधियों के दौरान श्रोता साथियों हमारे हाथों पर धूल, मिट्टी और अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु चिपक सकते हैं। यदि श्रोता साथियों हम हाथों की सही तरीके से सफाई नहीं करते हैं और उन्हीं हाथों से खाना खाते हैं या आँख या नाक या मुँह को छूते हैं साथियों, तो ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर तक पहुँच सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें तो हमारे हाथ हमारे शरीर का सबसे अधिक सक्रिय हिस्सा है। हम हाथों से खाना खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, पानी भरते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, पशु की देखभाल करते हैं और रोजमर्रा की लगभग हर चीज छूते हैं। श्रोता साथियों, काम करते समय हाथों पर दिखाई देने वाली मिट्टी के साथ साथ ऐसे सूक्ष्म जीव भी लग सकते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। केवल हाथ देख कर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वे पूरी तरह साफ है या नहीं। जब हम बिना हाथ धोए भोजन करते हैं, हाथों पर मौजूद गंदगी और सूक्ष्म जीव भोजन के साथ शरीर में जा सकते हैं, तो इससे दस्त, उल्टी, पेट से जुड़ी परेशानी और कई संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए हाथों की स्वच्छता परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कहना चाहेंगे कि हाथ हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला अंग है। इसीलिए श्रोता साथियों, हाथों की स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। अच्छी तरह से हाथ धोने की आदत कई संक्रमणों से बचाने में मदद कर सकती है।
1: जी जी।
0: खासकर साथियों, बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए हाथों की स्वच्छता है वो बहुत जरूरी है। हाथों को धोना श्रोता साथियों एक छोटी सी और आसान आदत है, लेकिन इसका प्रभाव अंजलि जी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा है। यदि परिवार का हर सदस्य सही समय पर और सही तरीके से हाथ धोने की आदत बना ले तो हम देखते हैं कि कई बीमारियों के फैलने की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है।
1: जी,
0: इसलिए श्रोता साथियों हमें हाथों की स्वच्छता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनाना चाहिए।
1: जी हाँ मनीषा, हाथ धोने के लिए केवल ये देखना जरूरी नहीं है कि हाथों पर मिट्टी लगी है या नहीं है।
0: जी हाँ,
1: कुछ खास परिस्थितियों में हाथ धोना बहुत जरूरी है, जैसे कि खाना बनाने से पहले, यानी कि श्रोता साथियों रसोई में जाने और भोजन बनाने से पहले हाथ साफ करना जरूरी है। इससे हाथों की गंदगी भोजन तक पहुंचने की संभावना कम होती है। खाना चाहे घर का हो या बाहर का, खाने से पहले हाथ धोने की आदत डालें।
0: बिल्कुल,
1: छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही होती है इस समय, इसलिए उन्हें खाना खिलाने से पहले हाथों की सफाई का विशेष महत्व हमें सिखाने की जरूरत है। इसी के साथ मनीषा, शौचालय जाने के बाद यह हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि शौचालय के बाद हाथों पर मौजूद कीटाणु दूसरे लोगों और वस्तुओं तक पहुंच सकते हैं। छोटे बच्चे की सफाई करने के बाद साबुन और पानी से हाथ जरूर धोएं। गांव में पशुपालन दैनिक जीवन का हिस्सा है। पशुओं को छूने या उसकी जगह की सफाई करने के बाद हाथों को धोना खासकर भोजन से पहले बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, खांसी और छींक के दौरान हाथों का इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए हाथों की सफाई करना जरूरी है। कूड़े के संपर्क में आने के बाद बिना हाथ धोए भोजन या रसोई की चीजों को हमें नहीं छूना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से बातें चली रही हैं कि स्वच्छ हाथ स्वस्थ जीवन और हाथों की स्वच्छता हम कैसे रखें।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हमारी श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य की ओर। जैसा कि मनीषा, हमने गीत से पहले जाना कि कब और किस तरीके से हमें हाथ धोने की जरूरत है, यही हाथ धोने का सही तरीका क्या है, अगर ये हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं। तो श्रोता साथियों, हाथ धोना केवल पानी के नीचे हाथ लगाने का नाम नहीं है, साबुन और साफ बहते पानी से हाथों को अच्छी तरह रगड़ कर धोना जरूरी है। आसान तरीके की बात करें तो पहला कदम है साफ पानी से हाथ हमें सबसे पहले गीले करने हैं, हाथों पर साबुन लगाना है, दोनों हथेलियों को अच्छे तरीके से रगड़ना है, हाथों को उल्टी तरफ यानी हथेली के पीछे की तरफ की ओर साबुन लगाकर रगड़ें, दोनों हाथों की उंगलियों के बीच अच्छी तरह सफाई करें, उंगलियों के सिरों और नाखूनों के आसपास को भी रगड़ें, दोनों अंगूठे को अच्छी तरह साफ करें, कलाई तक हाथों को अच्छी तरह रगड़ें, साफ पानी से साबुन अच्छी तरह धो लें और हाथों को साफ कपड़े और उचित तरीके से सुखाएं। जल्दी जल्दी हाथ धो लेने से बेहतर है कि कुछ समय लेकर हाथों के हर हिस्से की अच्छी तरह सफाई की जाए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, ये तो आपने हमारे श्रोता साथियों को बताया कि हाथ धोने का सही तरीका क्या है। यहीं अगर बात करें कि घर में हाथों की स्वच्छता क्यों जरूरी है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि घर को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम अपने परिवार के सदस्यों के हाथों को साफ रखने पर ध्यान देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: घर में साबुन और पानी ऐसी जगह पर उपलब्ध होना चाहिए श्रोता साथियों, जहाँ परिवार के लोग आसानी से हाथ धो सकें।
0: बिल्कुल,
1: रसोई में काम करने वाले व्यक्ति को भोजन बनाने से पहले कच्चे खाद्य सामग्री संभालने के बाद श्रोता साथियों हाथों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए, और भोजन करते समय या भोजन बनाते समय भी हमें हाथ धोने चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यही अगर अंजलि जी बात करें कि हाथों की स्वच्छता और भोजन की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि भोजन हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है, लेकिन यदि भोजन तैयार करने या खाने से पहले श्रोता साथियों हम हाथ नहीं धोते हैं, तो भोजन के माध्यम से संक्रमण का खतरा है वो बढ़ सकता है।
0: जी हाँ,
1: भोजन बनाने वाले व्यक्ति को हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, फल और सब्जियों को भी उचित तरीके से धोकर उपयोग करना चाहिए, कच्चे और पके भोजन को संभालते समय भी स्वच्छता का ध्यान रखना भी हमारे लिए श्रोता साथियों उतना ही जरूरी है। इस तरह हाथों की स्वच्छता खाद्य स्वच्छता का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, बारिश के दिनों में मिट्टी, कीचड़ और नमी बढ़ जाती है। गांव में लोग खेतों में काम करते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं और घर के आसपास भी गीलापन रहता है। ऐसे समय में हाथों की सफाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बाहर से घर आने के बाद हाथ साफ करना, भोजन से पहले हाथ धोना, शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना विशेष रूप से जरूरी है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके हाथों की सफाई पर भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चे अक्सर खेलते समय हाथों को मुंह तक ले जाते हैं। अगर हाथों पर केवल सामान्य धूल मिट्टी लगी है तो पानी से सफाई हो सकती है, लेकिन कई परिस्थितियों में साबुन के साथ हाथ धोना अधिक प्रभावी होता है। श्रोता साथियों, हम अपने घर में एक छोटा सा नियम बना सकते हैं। घर में प्रवेश के बाद हाथ साफ करें, खाने से पहले हाथ साफ करें, शौचालय के बाद हाथ साफ करें। बच्चों को इस नियम का हिस्सा बनाएं। घर के बड़े सदस्य अगर स्वयं इस आदत का पालन करेंगे तो बच्चे भी उसे आसानी से अपनाएंगे। गांव में सामुदायिक स्तर पर भी हाथों की स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, स्वयं सहायता समूह और ग्राम सभा जैसे मंचों पर स्वस्थ हाथों के महत्व की चर्चा की जा सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर श्रोता साथियों को बताएं कि हमारे रोज की जो छोटी छोटी आदतें हैं उनमें भी हमें थोड़ी सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि श्रोता साथियों, हाथों की स्वच्छता के साथ साथ कुछ सामान्य बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि नाखूनों को साफ रखना, गंदे हाथों से आंख, नाक या मुंह को बार बार न छुए, भोजन से पहले श्रोता साथियों हाथ धोए, शौचालय के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ करें, खांसते या छींकने के बाद भी हमारे हाथों की सफाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि साथियों साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त तो एल्कोहल आधारित हैंड वॉश यानी कि सैनिटाइजर का उपयोग भी आप कर सकते हैं। हालांकि साथियों, जब हाथ बहुत गंदे

0: या चिकने हो तो साबुन और पानी के साथ धोना ही हमारे लिए एक सही विकल्प हो सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, हमारे हाथ दिन भर हमारे साथ काम करते हैं, इसलिए हाथों की सफाई हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ जीवन की शुरुआत हमेशा किसी बड़ी चीज से नहीं, कई बार एक छोटी सी आदत से ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनती है। इसलिए स्वस्थ हाथ, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ परिवार, खुशहाल जीवन, इसी संदेश के साथ आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ।
1: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। जी हां श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं एक नए प्रेरणादायक विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर मैं हाजिर हूँ। साथियों, आज का हमारा विषय है दूसरों की मदद करने का महत्व। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेले कभी जीवन नहीं जी सकता। उसे जीवन के हर मोड़ पर किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता तो पड़ती ही है। कभी परिवार हमारा सहारा बनता है दोस्तों, तो कभी हमारे मित्र, कभी हमारे शिक्षक, तो कोई अनजान व्यक्ति जो मुश्किल समय में हमारा मददगार बन जाता है। इसी कारण से दोस्तों सहायता और सहयोग मानव जीवन की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। हम देखते हैं कि दूसरों की मदद करना केवल एक अच्छा कार्य नहीं है, बल्कि ये इंसानियत की सबसे सुंदर पहचान होती है। साथियों, जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए दया, करुणा और सहयोग की भावनाएं होती है ना, वे वास्तव में महान कहलाते हैं। और हम देखते हैं कि मदद केवल पैसों से नहीं होती, बल्कि अच्छे शब्दों, सही मार्गदर्शन, समय देने और भावनात्मक सहारे से भी होती है। साथियों, तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों पहले यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन हम करें। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

चाहूंगी कि इस पूरे संसार में भला उसी का हुआ है जिसने किसी और का भला किया हो। अगर आपके कार्यों से दोस्तों किसी और के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी और के घर में दिया जलता है, या फिर कहूँ तो किसी और के घर में खुशियाँ आती है, तो उससे अच्छा काम या उससे पुण्य का काम कोई भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, वही व्यक्ति असल में ईमानदार कहलाता है और समाज में बदलाव ला सकता है जिसने अपने कार्यों से किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई हो। हम देख सकते हैं दोस्तों कि दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक खुशी मिलती है, यानी कि अंदर से खुशी मिलती है। साथियों, जब हम किसी की सहायता करते हैं तो केवल सामने वाले को ही राहत नहीं मिलती दोस्तों, बल्कि हमारे मन को भी शांति और संतोष मिलता है। जैसे कि किसी भूखे को भोजन खिलाना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी विद्यार्थी को पढ़ाना, या फिर श्रोता साथियों किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना। हम देखते हैं कि ये जो सभी कार्य हैं वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि दुनिया की कोई भी दौलत उस खुशी की बराबरी नहीं कर सकती जो किसी की मदद करके हमें मिलती है। मदद करने से दोस्तों हमारा मन हल्का होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन का उद्देश्य भी हमें समझ में आने लगता है। दोस्तों, कई बार तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, इसलिए हम किसी की सहायता नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, सहायता के लिए धन से अधिक जरूरी है अच्छा दिल और सच्ची भावना। एक मीठा शब्द भी श्रोता साथियों किसी टूटे हुए इंसान को एक नई उम्मीद दे सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दूसरों की मदद करने से हमें एक आत्मिक शांति, संतोष और खुशी मिलती है। तो जैसा कि दोस्तों बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे चल ही रही हैं, ये बातें मैं आगे भी करूंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा विषय हमारा बातचीत का चल रहा है, हम जान रहे हैं कि दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है और इस मदद से हमें क्या फायदे हो सकते हैं। गीत से पहले जैसा कि हम जान पाए थे श्रोता साथियों कि दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक खुशी मिलती है। अब यहीं अगर बात करूं श्रोता साथियों, तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो इससे समाज में भी मजबूती आती है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मेरे मदद करने से समाज में मजबूती कैसे आएगी, तो आपसे कहना चाहेंगे कि जिस समाज में श्रोता साथियों लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वह समाज हमेशा मजबूत और खुशहाल बनता है। अगर समाज में केवल स्वार्थ हो श्रोता साथियों, तो वहाँ रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, लेकिन वहीं जहाँ सहयोग और संवेदनशीलता होती है, वहाँ प्रेम और विश्वास बढ़ता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या फिर कठिन परिस्थितियों में जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तब मानवता की असली तस्वीर हमारे सामने आती है। हम देखते हैं दोस्तों कि सहायता का भाव समाज में भाईचारे और एकता को मजबूत करता है। इससे लोगों के बीच विश्वास पैदा होता है और समाज में सकारात्मक वातावरण बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों, सहायता करने से समाज भी मजबूत बनता है। साथ ही हम देखते हैं कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो लोग हमें याद रखते हैं। जैसे कि दुनिया में दोस्तों बहुत से लोग धनवान बने हैं, प्रसिद्ध भी हुए हैं, लेकिन समय के साथ लोग उन्हें भूलते गए। लेकिन जिन्होंने श्रोता साथियों मानवता की सेवा की है, दूसरों की हमेशा सहायता की है, उन्हें लोग हमेशा याद रखते हैं। ऐसे लोग दोस्तों समाज में प्रेरणा बन जाते हैं और उनका जीवन ये संदेश देता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, पैसे या पद से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और सेवा भावना से की जाती है। हम देखते हैं कि किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करने वाला व्यक्ति, किसी बीमार की सेवा करने वाला व्यक्ति या फिर किसी दुखी इंसान को सहारा देने वाला व्यक्ति हो, ये सभी दोस्तों समाज के असली नायक माने जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब तक बहुत बड़ा काम न कर ले तब तक सहायता का कोई महत्व नहीं है, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे कि किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करवाना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी पिलाना, किसी उदास व्यक्ति को हिम्मत देना या फिर किसी विद्यार्थी को सही सलाह या फिर मार्गदर्शन देना, किसी गरीब को भोजन देना और किसी परेशान व्यक्ति की बात सुन लेना। दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे कार्य हैं, वो दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो काफी गहरा होता है। कई बार इंसान को पैसों से ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों अपनापन की और सहारे की। तो ऐसे में हमारी छोटी छोटी मदद किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। तो इस तरीके से कार्यक्रम के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों आपसे कि दूसरों की मदद करना मानव जीवन का सबसे सुंदर गुण है। यह केवल समाज को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी खुशहाल और अर्थपूर्ण बना देता है। साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दुख को समझे, जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए आगे आए। और हम देखते हैं कि हमारे इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रयास साथियों किसी के जीवन में बड़ी उम्मीद बन सकते हैं। ऐसे में हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सेवा, सहयोग और मानवता की भावना को हमेशा अपनाएंगे। हम केवल अपने लिए नहीं दोस्तों, बल्कि समाज और जरूरतमंद लोगों के लिए भी जिएंगे। याद रखिए साथियों, दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं कभी अंधेरे में नहीं रहता। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले क्यों ना दोस्तों एक प्यारे से गीत के साथ पहले हम मनोरंजन कर लें।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: जागृति बूंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बूंद हूँ था का
0: अरे जागृति बूंद आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बूंद एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बूंद हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बूंद आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बूंद आपड़े भाई बूंदो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह या आपड़े नी कितनी शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
0: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
3: होवे आज नाना ना कदम है ई अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
5: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा थकी बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर
4: हिंडो स्कूल जा आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो
5: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
0: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा
5: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: हमरो हमरो हमरो गरीबो ने पूछे है जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नु समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हंग्र अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित नमस्कार साथियों आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन की गजल है जिसका मतलब है रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।

तो साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।